0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हॉल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हॉल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हॉल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue, South East Calgary, near

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: प्रोग्राम का ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 Trent Avenue North East Calgary।

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानने लई आज ही अपने घरां ते कारां दी रेडियो नूं पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है यूनिट नंबर 2121 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन बार्स वॉशरूम वैनिटी क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पॉल सेखो जी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फिश या स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जां फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाले इको एक धार्मिक पंजाबी रेडियो 102.7 FM तो हुण सरवण करो जी आदि गुरु जुगो जुग अटल सत गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा सच खंड श्री हरमंदर साहिब श्री अमृतसर साहिब जी विखे होया अज अमृत वेले दा मुख वाक ते व्याख्या। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
2: सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, जैत श्री महला चौथा।

0: भाई साधु तो भाव भले पुरश, साधु तो भाव इथे गुरु रूप साधु, वो जेडे मनमुख हैं गुरु रूप साधु दे चरना कमलों के नाम रूपी चरणा च मन नहीं लाते, जो नाम रूपी चरणा दे नाल नहीं जुड़ते तो जिन्ना जेड़ा उन्हां दा जन्म है आकाथा तो भाव किसे कम का नहीं व्यर्थ चलिया जाता है, गल्लां बातां करके अपना समा बर्बाद कर देंदे हन मनमुख। जे बाणा भी गुरु वाला पालिया, ककार भी पाई फिरदा, गुरबाणी पढ़ता नहीं, जाप नहीं करता, अभ्यास नहीं करता, गुरबाणी नूं विचारदा नहीं, तो भाई ठीक है, तो हमेशा कुतर्क करता है। महाराज कहिंदे फिर ऐसा बंदा भी मनमुख है, जिहड़ा गुरु दे भाणे च चले गुरमुख है, मन दे पिछे चलन वाला मनमुख है। सो उन्हां दा जन्म अकाथा चलिया जांदा है, भाव व्यर्थ चलिया जांदा है मनमुखां दा, क्योंकि गुरु दे चरण कमलां च नाम रूपी चरणां च मन नहीं जोड़दे।
1: जिन साधु चरण साध पग सेवे, तिन सफल ओ जन्म सनाथा।
0: जिन साधु जिन्हां ने गुरु रूप साधु दे चरणां नूं अपने हिरदे च बसा लिया, साध पग, पग तो भाव पैर, चरण नाम रूपी चरण, जिन्हां ने गुरु दे नाम रूपी चरणां नूं हिरदे च बसा लिया उन्हां दा जिहड़ा जन्म है तिन सफलो जन्म सानाथा, उन्हां दा सारा जन्म ही श्रेष्ठ हो जांदा है, भाव उन्हां दा जन्म फलीभूत हो जांदा है, सफला हो जांदा है, जेडे गुरु रूप साधु दे नाम रूपी चरणा नूं अपने हिरदे च बसाउणा कर

जगन्नाथा, जगन्नाथ का की अर्थ है? जग का स्वामी, जगन जगन तो भाव जगन्नाथा तो भाव हुंदा स्वामी, संसार का मालक, पैदा करने वाला, रोजी देने

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-3332 नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयरडील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयरडील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130-4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।
3: कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
4: एक महावीर जैन हुए हैं जैन धर्म के अंदर, उनकी जीवनी से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है जो दास और परमात्मा कबीर जी आपको समझाना चाहते हैं। ऋषभ देव जी ये एक बहुत नेक राजा थे, सतयुग के अंदर बहुत ही अच्छे राजा थे, परमात्मा को चाहने वाले थे और वेदों में कबीर देव की महिमा बहुत लिखी है। तो जो ऋषि लोग थे, जो ऋषभ देव जी के गुरु ब्राह्मण थे, उनसे ये प्रश्न किया करते थे ऋषभ देव जी कि वेदों में आप बताते हो कि कवि नाम का कोई प्रभु है, कबीर, कबीर देव है, तो अनुवादकर्ता कर देते थे वो कवि है, कवि है, तो उसका नाम चलो कवि है क्योंकि वो परमात्मा अपनी लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों शब्दावलियों के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार प्रत्येक बार करने आता है, इसलिए उसको कवि कहते हैं। हम उसको कबीर देव, वेदों में लिखा कबीर देव, हम उसको कबीर साहब कहने लगे, वो कवि ही मान लेते हैं। तो वहां लिखा है परमेश्वर की वाणी में, गरीबदास जी ने कहा है कि ऋषभ देव के आईया कवि नाम में करतार है, उस कवि नाम तय आगे वे। वैसे तो कबीर देव का अर्थ कवि साहब, अगर हम वैसे व्याकरण अनुसार करें तो कवि साहब, कवि साहब माने वो जो परमात्मा, उसका नाम ही कवि साहब है, कवि, हम उसको कबीर साहब कहने लगे, कबीर। सिर्फ उसमें अंतर है, जैसे भाषाओं में अंतर होता है, तो इस प्रकार वो कबीर परमात्मा, तो रस्यव देव जी के वही परम अक्षर ब्रह्म उस प्यारी आत्मा को समझाने के लिए कबी नाम से आए, कबी, और कहने लगे मैं वो परमात्मा हूं जो वेदों में वर्णित है कबी, क्योंकि वो अज्ञानी ऋषि महर्षियों ने रस्यव देव जी को भ्रमित करके, अनुवाद गलत करके उसको कबी सिद्ध कर रखा। वैसे वो कबीर देव है, उसको कबीर देव ही बोलना चाहिए हमने, कबीर देव। जैसे यजुर यजु है, यजु कहने से क्या लाभ, यजुर वेद साथ बोलना दत जवाब, तो वो कबीर देव है, कबीर देव, कबीर साहब है। तो परमात्मा आए, रस्यव देव जी को बहुत सुंदर ज्ञान सुनाया, रस्यव देव जी बहुत प्रभावित हुए और इतना बैराग हो गया कि राज्य भी त्याग दिया अपने पुत्रों को, सबको, भरत आदि को, सबको राज्य दे दिया। लेकिन उसी समय ये ब्राह्मण लोग ये गणे परमात्मा एक एक ही ऋषि रूप में आते हैं, मिलते हैं, तो बाद में ऋषव देव जी को उन नकली काल प्रेरित गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने भ्रमित कर दिया कि वो झूठा है, कपटी है, वो गलत ज्ञान बताता है, ब्रह्म से ऊपर भगवान नहीं, ब्रह्म लोग तो ऊपर कोई स्थान नहीं। अब ऋषव देव जी ने ओम नाम का जाप और साथ में हठ योग 1000 वर्ष तक किया, 1000 वर्ष तक तप किया, उसके बाद निराहार रहकर कुछ नहीं खाया 1000 वर्ष तक, इतने तगड़े शरीर होते थे पहले सतयुग। तो जब उन्होंने प्रथम बार अपनी उपासना पूर्ण की और वो व्रत खोलिया, तो सबसे पहले धर्म देशना बोल रहे हैं दीक्षा को, अपने पौत्र भरत के पुत्र को, अपने बेटे के बेटे को यानी पोते को, मारीचि नाम था उसका, सबसे पहले रस्यव देव जी ने उस मारीचि को नाम दिया। और रस्यव देव जी केवल ओम मंत्र ही जाप करते थे और साथ में हठ योग भी करते थे, जो खिचड़ी ज्ञान ब्रह्मां जी के द्वारा काल प्रेरणा से जो ग्रहण किया हुआ है, इसके लिए थोड़ा सहयोग लेते हैं। रस्यव देव जी ने अपने पौत्र यानी पोते मारीचि को प्रथम मंत्र दिया, पहला चेला वो ही मुंडिया, और वो मारीचि वाली आत्मा आगे चलकर महावीर जैन कहलाए, एक प्रमाण जैन धर्म का, एक जैन संस्कृति कोष 3 भागों में है और इनके इनको वो फाइनल मानते हैं, जैसे हम गीता जी वेदों को मानते हैं, ऐसे इन तीनों पार्ट को, 3 पार्ट हैं ये, तो इनको ये अंतिम मानते हैं। और प्रथम भाग में आपको दिखाते हैं, देखिए जैन संस्कृति कोष, जैन इतिहास प्रथम भाग, प्रोफेसर है भागचंद्र जैन भास्कर, ये कहां से प्रकाशित है, जैन संस्कृति कोष, जैन इतिहास संस्कृति कला एवं पुरातत्व प्रथम खंड, लेखक हैं प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर, समंती प्राच्य शोध संस्थान नागपुर, कला एवं धर्म शोध संस्थान वाराणसी। और ये कहां से प्रकाशित है, कहां से छपा है, जैन इतिहास, जैन संस्कृति कोष, जैन इतिहास संस्कृति कला पुरातत्व प्रथम खंड, लेखक प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर, प्रकाशक हैं डॉक्टर प्रेम शंकर द्विवेदी, मानद निदेशक कला एवं धर्म शोध संस्थान B33A1 न्यू साकेत कॉलोनी BHU वाराणसी पुनमृतना। और भागचंद्र जैन दूसरा है प्रकाशक, भागचंद्र जैन भास्कर ये वही है, लेखक भी है। और ये कहां से प्रकाशित है, ये निश्चय प्रकाश, ये प्राप्ति स्थान। अब ये है, ये किसने, ये पुण्य स्वर्गीय पुण्य पूज्य पिता श्री गोरे लाल जी जैन एवं मातु श्री पूज्या तुलसा देवी जैन की पुण्य समर्थि में सादर समर्पित है, ये ऐसे ये भागचंद्र जैन के माता पिता की तरफ से को समर्पित है। इसके प्रश्न नंबर 175 पर रस्यव देव के पौत्र मारीचि भरत के पुत्र, यानी भरत जो इसका पुत्र था, रस्यव देव के पौत्र मारीची अर्थात भरत के पुत्र, मारीची भरत का पुत्र था जो ऋषभ देव का पुत्र था, को पुराण में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया है, यानी मारीची को। और यही मारीची जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर वर्धमान बना, यानी महावीर जैन बना, यही आत्मा आगे चलकर 176 पृष्ठ पे जैन संस्कृति कोष, जैन इतिहास, कला और पुरातत्व, तीर्थकर ऋषभ देव की जीवन घटनाएं, तीर्थकर ऋषभ देव अंतिम कुलकर नाभि राज के पुत्र थे, उनकी माता मरुदेवी थी, वे इक्ष्वाकु वंशी नाभि राज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभि राज ने ऋषभ देव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया, दो पत्नियां थी। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया और सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों को जन्म दिया और ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया, यानी ऋषभ देव जी के 100 पुत्र और दो पुत्रियां थी। समय आने पर ऋषभ देव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनकी योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए। साधना काल में पाणिपात्री ऋषभ देव एक वर्ष तक निराहार रहे, यानी कुछ नहीं खाया। बाद में बाहुबली के पौत्र श्रियांश कुमार ने इक्षु रस देकर, ईख का रस, गन्ने का रस पिलाकर उनकी इस निराहार वृत्ति को यानी उस व्रत को तोड़ा। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि, फिर 1000 वर्ष तक फिर तपस्या की उसने। ऋषभ देव ने अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया, या कैवल्य मुक्ति बोलते हैं, कैवल्य, अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया और धर्म देशना प्रारंभ की, नाम देना शुरू कर दिया अपने आप 1000 वर्ष तक तप करके, और उसमें जितना उसने ज्ञान हुआ, जो भी प्राप्ति हुई, उसके आधार से धर्म देशना यानी नाम देना शुरू कर दिया। प्रथम धर्म देशना, प्रथम नाम भरत के पुत्र मारीची को दी, यानी उसको दीक्षा दी अपने पौत्र को, जो बाद में 24वें तीर्थ कर महावीर बने, ये महावीर जैन बना। अब यहां से हमने इतना ही लेना है बस। अपुन आत्मा ऋषभ देव जी ओम मंत्र का जाप करते थे, और ये भी इसमें ओम को आगे चलकर अणोम करने लगे, अणोम अणोम अणोम नहीं, ओम है इसने सीधा ओम बोल दे, अलग से इसकी प्रक्रिया आने वालों ने अन्य तीर्थकरों ने कर दी। प्रथम तीर्थकर जो महान आत्मा ऋषभ देव जी थे, उन्होंने केवल ओम नाम का जाप किया। इसको ये करते कैसे थे, ओम ऐसे करते रहते थे, तो बाद वालों ने उनको अणोम कहने लगे, अणोम, लेकिन ये ओम है। तो ऋषभ देव जी ओम नाम का जाप करते थे और उन्होंने सातवां अठ योग भी करते थे, जो शास्त्र विधि को त्याग का मनमाना आचरण होता है, जो वेदों अनुसार और गीता अनुसार नहीं है, वो मनमाना आचरण होता है। जो वेदों और गीता से ली गई साधना है वो शास्त्र अनुकूल साधना है, लेकिन वो कितनी साधना कहां तक की है उतना ही लाभ मिलता है उसको। तो वही मंत्र, वही साधना, वही विधि ऋषभ देव जी ने अपने पौत्र, अपने पोते मारीची को दी, जो भरत का पुत्र था, और मारीची के जीव को इस साधना के करने से कितना दुख और कितना सुख हुआ ये वर्णन करते हैं। ये देखिएगा, ये एक पुस्तक है, इन्हीं बड़े जैन संस्कृति कोष से ही निष्कर्ष निकालकर लिखा गया है। आओ जैन धर्म को जाने। धर्म मंच प्रश्नोत्तर माला, कौन बनेगा सबसे ज्ञानी, यह ओम अरिहंताम अणोम अणोमो, ये मंत्र मंत्र यज्ञ। प्रवण चंद्र जैन, एम ए शास्त्री, इन्होंने इसको लिखा है। आओ जैन धर्म को जाने, लेखक है प्रवीण चंद्र जैन, एम ए शास्त्री, जम्बू द्वीप हस्तनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बू द्वीप हस्तनापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ये इनके प्रकाशक हैं और ये मुद्रित है दिनेंद्र जैन, न्यू रसब ऑफसेट प्रिंटर्स, मेरठ। फोन नंबर इतना। ऋषभ देव जी के कोई गुरु नहीं थे, वो अपने आप ही अपनी साधना किया करते थे। हम 293 पर चलते हैं। वो जो मारीचि वाले जीव ने जो साधना ऋषभ देव जी से लेकर की थी, ओम नाम का जाप और अन्य साधना जो तप किया, उससे उसको क्या परिणाम मिला, 293 पृष्ठ पे। आओ जैन धर्म को जाने, विशेष प्रकरण। श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? अन्य 5 नाम हैं। एक वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर एमएम, वर्धमान। अब 294 पे आओ जैन धर्म को जाने। महावीर भगवान, श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहां से प्रारंभ होता है? उत्तर है पूर्वा नामक भील की पर्याय से। प्रश्न, पूर्वा भील कौन था और उसने क्या किया? उत्तर, वो पुष्कलावती देश की पुंडरीकिणी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनि राज से मदमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव पूर्वा भील की प्रिया यानी शरीर से कहां गया? उत्तर है कि पहले 100 धर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर स्वर्ग से कहां गया? भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीचि नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। यानी इस मारीचि से पहले का भी इसका एक जीवन बता रखा है। उसके बाद ये ऋषभ देव का पोता मारीचि हुआ, महावीर का जीव। फिर वो ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। ब्रह्म स्वर्ग को ब्रह्म लोक कहो, ब्रह्म लोक में गया ऋषभ देव जी से नाम लेकर, ओम नाम का जाप करके ये ब्रह्म लोक में गया। ब्रह्म स्वर्ग कहो, ब्रह्म लोक कहो, ब्रह्म लोक, ब्रह्म स्वर्ग के बाद महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। फिर जटिल के शरीर को छोड़कर कहां गया? सौधर्य स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर स्वर्ग से कहां गया? इसी भरत क्षेत्र में सुतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम क्षत्री से अग्निसह नामक पुत्र हुआ। अग्निसह फिर कहां गया? स्वर्ग में गया। फिर स्वर्ग से कहां गया? भरत क्षेत्र के मंदिर नामक ग्राम में गौतम ब्राह्मण की कौशिकी पत्नी से अग्निमित्र नाम का पुत्र हुआ। अग्निमित्र कहां गया? महेंद्र स्वर्ग में गया, ये इंद्र के लोक में गया। फिर महेंद्र स्वर्ग से कहां गया? ये मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। फिर भारद्वाज कहां गया? महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ, फिर इंद्र के लोक में गया। फिर महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहां गया? इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला नगोदिया जीव होया। ओहो, और अब देखना, ओ मेरे मालिक, कलेजा मुंह को आता है। अब निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहां गया, अब उसके बारे में क्या बताता है? उत्तर है, अनेकों भव धारण किए, जो इस प्रकार है, 1000 वर्ष, 1000 आंख के वृक्ष, 1000 बार तो आंख का वृक्ष बना, और 80,000 सीप के भव, 20,000 नीम वृक्ष के भव, 90,000 बार केली वृक्ष के भव यानी केले के, और 3,000 बार चंदन के वृक्ष के शरीर धारण किए, और 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भव, और 60,000 बार वैश्या के भव। 60,000 बार वैश्या के भू और 5 करोड़ बार शिकारी के शरीर। ओहो, यहां फोड़ लिए करम 5 करोड़ बार शिकारी बना, 20 करोड़ बार हाथी के भाव और 60 करोड़ बार गधे के भाव। 60 करोड़ बार गधा ते कब बना बतेरा हे भगवान, 60 करोड़ बार, ओहो 60 करोड़ बार गधे के शरीर और 30 करोड़ बार कुत्ते रही खी कसरिया निकलगी कुत्ते के जीव। उत्तरा एक के कुत्ते का जीवन देख लो कितना दुखदायी होता है और 30 करोड़ बार कुत्ते का शरीर, 60 करोड़ बार नपुसंग के भाव और 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, 90 लाख बार धोबी के शरीर भाव, 8 करोड़ बार घोड़े के भाव और 20 करोड़ बार बिल्ली के भाव और 60 लाख बार गर्भपात से मरण और केवल 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त किया। अब पुण्य आत्माओं, अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमें आकर के यही बताना चाहते हैं कि तुमको परम संत मिला नहीं, सत साधना प्राप्त हुई नहीं, सत्संग तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण से तुम्हारे ये जन्म और मृत्यु के कष्ट समाप्त नहीं हुए। और गीता जी में बताया है कि जो व्यक्ति तत्वदर्शी संत से संबंधित हो जाता है उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान से फिर वो तत्ब्रह्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है और पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाता है, फिर वो जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा मरण यानी बुढ़ापे और मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न। आज आप जी को बताया, शुरुआत की थी कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार, नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटते फिर फिरते चारों खानी। ये चारों खानी यानी चार प्रकार से जीवों की जो है उत्पत्ति होती है, अंडरज जेरज उद्बुद शब्दज, यानी अंडे से जेर से जैसे मां के गर्भ में मनुष्य पशु हैं इनमें, और अपने आप जैसे सुरसी हो जाती है अपने आप जो उत्पन्न होते हैं, ये चार प्रकार से जीव उत्पन्न होते हैं, इनको चार पार्ट बोलते हैं, चार खानी चार विभाग। इन चारों विभागों में उत्पन्न प्राणियों की संख्या कितने प्रकार की होती है, 84 लाख 84 लाख प्रकार के शरीरों में कष्ट उठाना पड़ता है, चार खानी में भटकते धक्के खाते। जैसे इन ऋषभदेव जी ने भी नाम लिया, इनकी भी जन्म मृत्यु अभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि यही आगे चलकर बाबा आदम हुए ऋषभदेव जी, और बाबा आदम फिर उसमें स्वर्ग में गए हुए हैं। स्वर्ग के अंदर एक तरफ नरक है एक तरफ स्वर्ग है, स्वर्ग में विराजमान है और वहां भी दुखी। मुसलमानों वाले पुस्तक में लिखा है हजरत मोहम्मद जी की जीवनी में कि बाबा आदम, हजरत मोहम्मद ने देखा वो एक बार हंस रहे थे एक बार रो रहे थे। हजरत मोहम्मद ने पूछा उस फरिश्ते से जबराइल से कि ये कौन व्यक्ति है, जबराइल ने बताया कि बाबा आदम है, ये रो और हंस क्यों रहा है, कि स्वर्ग के अंदर तो इसकी अच्छी संतान है जो नेक नीति से रहा करती वो स्वर्ग में है, और जो निकम्मे थे भक्ति करी नहीं मांस मिट्टी खाते थे वो नरक में पीटे जा रहे हैं, ब्राह्मण माटी हो रही है। जब ये नरक की तरफ देखता है तो अपने निकम्मी संतान को दुखी होते हुए देखकर रो रहा है, और जब स्वर्ग की तरफ देखता है अच्छी संतान स्वर्ग के अंदर आनंद से रह रही है तब वो खुश होता है। तो पुण्य आत्माओं, इस स्वर्ग में भी नो की नो दुर्गति जैसी पृथ्वी पर है, ऐसे दुख और सुख समांतर चल रहे, एक ही स्थान है सतलोक, जहां जाने के बाद जीव की फिर जन्म मृत्यु नहीं होती। अब आपने ऋषभदेव जी से प्राप्त दीक्षा मारीची जी की क्या दुर्गति हुई आपने पढ़ लिया, और यही आगे चल के महावीर जैन हुआ, वही आत्मा महावीर जैन कहलाई। अब आपने देखा कि 60 करोड़ बार गधा बनया और 30 करोड़ बार कुत्ता और केवल 80 लाख बार देवता बनया। अब उस देवता ने के चट्टे गधा और कुत्ते भी बन गया। इसलिए परमात्मा बताते हैं कि ये काल की भूल भुलैया है। यथार्थ ज्ञान ना प्राप्त होने से जीव की ऐसे ही दुर्गति रहती है। कई पुण्यात्मा जो होते हैं वो अल्पज होते हैं, कुछ श्रद्धालु ज्यादा होते हैं, वो ये सोचते हैं कि कहते हैं कई बार कि यदि सभी आप वाली साधना कर लेंगे, कबीर जी वाली भक्ति कर लेंगे, सभी सतलोक चले जाएंगे तो यहां पृथ्वी पर कौन रहेगा, तो खाली रह जाएगी पृथ्वी, तो एक कैद है, कैद एक दुख सथल है, और हम पहले वहीं रहते थे सभी, तो पड़ी रहेगी खाली, ये निरेग्रह धक्के खाते अंडे ये और घूम लेगी खाली, अपन के लेना इसका ऊपर, हम तो अपने सतलोक चले जाएंगे, वहां हमारा निज स्थान है। तो ऐसी भ्रमणा पैदा कर रखी है कि यहां कौन रहेगा, इसने के फूकांगे जरा इसी दुरुक्ति होने लग रही जीव की, एक पल में भरोसा निके हो जा, कभी परले हो जा, कभी सूखा पड़ जा, कितना भूकंप आकर दुनिया मर जा, कितना साइक्लोन आ गया लाखों लोग मर जाते हैं, कभी सर्दी सतावे, गर्मी सतावे, सैकड़ों बीमारियां, तो यार यहां रहना के शौक है, तो मजबूरी फंस रहे हैं।

0: सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नू 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा, यूनिट नंबर 1130।

0: सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन ब्राड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम ते प्रसारित होण वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने, ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 एफएम इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।
2: कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
3: यही है आओ जैन धर्म को जाने। ये आओ जैन धर्म को जाने हम 295 पृष्ठ पर आगे हैं। हमने ये पढ़ लिया 60 करोड़ बार गधे के भाव शरीर, 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव, 60 करोड़ बार नपुसंक, 20 करोड़ बार क्षत्रिय, 90 लाख बार धोबी और 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली के भाव और 60 लाख बार गर्भपात से मृत्यु और 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त किया। केवल 80 लाख बार तो देवता होया और बाकी या ऊपर दुर्गति अलग से हुई। उसके बाद फिर कहा गया राजग्रह में स्थावर नामक ब्राह्मण होया, फिर महेंद्र स्वर्ग में गया, फिर ये हुआ, त्रिपृष्ठ नामक नारायण हुआ, फिर सातवें नरक में गया। ये सातवें नरक में और सातवें नरक से महावीर भगवान का जीव कहां गया? सिंहगिरी पे, सिंहगिरी पर्वत पर सिंह हुआ, फिर प्रथम नरक में गया। आगे हम ज्यादा ना देख करके यहां देखते हैं, सहस्रार स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन राजा की वीरमती रानी से नंद नामक का पुत्र हुआ। नंद का जीव आगे किस पर्याय में गया? पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ, तनंतर उसके बाद वही मारिचि वाला जीव 24वें तीर्थ कर श्री महावीर भगवान हुए। श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए, ओ तेरा गजब, 363 पाखंड मत चलाए। पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी कहा करते थे, कहते साच कहो तो जग नहीं माने और झूठ कही ना जाई हो, और साच ना पूरा पावते झूठा जगपति आई हो। परमात्मा कहते थे कि मैं सच्ची कहता हूं और मेरी बात पर कोई यकीन विश्वास नहीं करता, और ये झूठों के जो गलत साधना बता रहे हैं, ऐसी दुर्गति तुम्हारी हो रही है, उन सब के ऊपर सब विश्वास किए बैठे। अब विचार करो, मारीची वाले जीव ने, महावीर जैन वाले जीव ने मारीची रूप में जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव जी से उपदेश लिया था, और ऋषभ देव जी ने, क्योंकि और कोई मंत्र था ही नहीं, वेदों अनुसार साधना दी थी, उस ओम नाम के जापते और हठ योग करने से, तप करने से, तो क्या क्या उपलब्धियां हुई अभी आपने पढ़ा उठा और सुना। उसके बाद महावीर नाम से उत्पन्न हुए।

और उसके बाद महावीर जी का कोई गुरु नहीं था। इन्होंने स्वयं ही प्रेरित होकर के घर त्याग दिया। अपने आप काफी वर्षों तक निराहार रह करके, निवस्त्र रह करके साधना की, और उसके बाद इसने 363 पाखंड मत चलाए। पुण्यात्माओं, राजा ऋषभ देव जी से वेदानुसार साधना प्राप्त करके इन्होंने कष्ट भी बहुत उठाए, लेकिन 80 लाख बार देवता भी बन गए, क्योंकि पुण्य और पापों का लेखा अलग अलग भोगना पड़ता है। और अब इसने ना तो वेदों अनुसार साधना रखी महावीर के रूप में, और उसने आगे अपने अनुभव से वेदों से हटकर पाखंड मत चला दिए 363, जो वर्तमान के जैनी भाई और ये गुरु लोग उस महावीर जी द्वारा बताए गए पाखंड मत के आधार से साधना कर रहे हैं। इनको तो कुछ भी ना मिल रहा है, स्वर्ग में सपने में भी नहीं जा सकते, ये तो सीधे ही नरक और 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। ये दास का जो उपदेश है अपना बनाया हुआ नहीं है, ये परमात्मा का विधान बताया, और पुण्यात्मा इसको महसूस करें, गहराई से सोचें और इससे पीछा छुटवाएं और परमात्मा की भक्ति करें। इन्होंने स्वयं लिखा कि उन्होंने 363 पाखंड मत चलाए। पाखंड माने व्यर्थ, वेदों अनुसार साधना करने वाले मारीची जी की भी कितनी दुर्गति हुई, लेकिन कुछ राहत अवश्य साथ मिली। फिर उस राहत ने के चाटे गधे और कुत्ते की योनि भोगी, फिर देवता बढ़ गया। तो यहां परमात्मा क्या बताना चाहते हैं, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वारे। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटते फिर फिरते चारों खानी। चार खानी में गधे कुत्ते सुअर की योनियों में धक्के खाते फटकते, चार खानी में भरमते कभू ना लगते पारे, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकारे। सतगुरु यानी सच्चे गुरु के संपर्क में आने से, यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके सत साधना करने से ये सारा बाईपास निकाल दिया। ना तो 84 लाख योनियों में जाना, ना गधे कुत्ते सुअर की शरीरों में धारण करना, और इससे बाईपास निकाल करके या तो मनुष्य जीवन ही प्राप्त होगा यदि भक्ति पूरी ना हुई, और साधना पूरी हो गई तो हम सतलोक चले जाएंगे। अब क्या बताते हैं, सात समुद्र की मसी करूं, सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखो न जाए। कितनी प्यारी व्याख्या की है कि ऐसा संत मिल जावे, सतगुरु मिल जावे, जो इन सभी दुर्गतियों से, इस प्रकार के सभी कष्टों से, सभी योनियों से बचा दे। उस सत मंत्र के आधार पे कहते हैं, उस संत की सात समुद्र की मसी करूं इंक, सातों समुद्रों की इंक बना लूं, स्याही बना लूं, और लेखनी यानी कलम बना लूं सारे वृक्षों की, एक वृक्ष के एक टहनी की कितनी कलम बन जा, ढेर लग जा छोटी छोटी कलम। और कहते हैं पूरी पृथ्वी जितना कागज मेरे पास हो, और यदि ऐसे संत के गुण लिखने लगूं ये सभी समाप्त हो जाए, गुण पूरा ना हो। अब एक गधे का जीवन लिखने लग जाओ, एक दिन में उसकी के दुर्गति होती है, फिर कुत्ते का लिखो, सुअर का लिखो, फिर पुराने का, इतने कष्टों के अरुण से परमात्मा ने हमें बचा दिया। यानी सतगुरु के उपदेश ने, सच्चे गुरु जी के सच्चे मंत्र ने हमारे को कितना बाईपास निकाल दिया। कहते गुरु मानुष कर जानते ते नर कई है अंधे,
होवे दुखी संसार में फिर अग काल के फंदे। ऐसे संत को यदि आप जी केवल मानो ही समझकर ट्रीट करते हैं तो कहते वो मूर्ख व्यक्ति है। पुण्यात्माओं, परमात्मा परमेश्वर स्वयं आए थे, मनुष्य रूप ही है उनका, लेकिन वो तेजों में शरीर अधिक है, उस तेजों में शरीर को सरल करके हल्का तेज पुंज का शरीर बना करके वो एज इट इज प्रगट हुए थे छोटे से शिशु रूप में। धीरे धीरे लीला करते हुए बड़े हुए लीला की, तो ये ज्ञान प्रचार किया करते, सुख यही दिया करते जो आज परमात्मा आप जी को दे रहे हैं, वही कबीर जी इस दास के माध्यम से। तो उस समय हम परमात्मा से इसलिए दूर रहे, उनके संग नहीं जा सके, क्योंकि हम उन अज्ञानी अनाड़ी ऋषियों के द्वारा भ्रमित ज्ञान के आधार से हम परमात्मा को निराकार मानते रहे। इसलिए यदि परमात्मा कबीर जी कहा करते थे हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीर गरीबदास खालिक दनी, कबीर जी कह रहे हैं मेरा नाम कबीर, लेकिन ये बातें किसी के गले उतरी नहीं कि परमात्मा तो निराकार होता है, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए हमने परमेश्वर को परमेश्वर माना नहीं ओनली एक आदमी मान के और ज्ञानी मान के कि विद्वान है और कुछ सिद्धियां रखता है, इसलिए हम परमात्मा के साथ चिपके रहे, हमको हमने उनको परमात्मा नहीं माना। और कबीर जी कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओवें दुखी संसार में आ गए यम के फंदे। तो गुरुदेव को, वो तो भगवान स्वयं आए थे और इस दास को भेज दिया अपना आप जी को समझाने के लिए, अब मुझ दास को भी अपनी उन्होंने पावर दी है मालिक ने ही इस दास को, और वही सब परमात्मा ही कर रहे हैं। कबीर जी की शक्ति ही आप जी का सुख, आप जी को सुख दे रही है और साथ में आपको दुखों का निवारण कर रहे हैं और साथ में ये ज्ञान वही बता रहे हैं उन्हीं की वाणी से। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि यदि आपने गुरु जी को परमात्मा के तुल्य नहीं माना तो फिर भी काम कच्चा रह जाएगा, आपकी साधना विफल हो जाएगी। एक नियम है गुरु मानुष कर जानते वो नरकई है अंधे। अब गुरु कहो चाहे सतगुरु कहो, क्योंकि सतगुरु इसलिए कहना पड़ा कि नकली गुरु गणे, इसलिए सतगुरु शब्द लगाना पड़ा, और वास्तव में गुरु शब्द पर्याप्त है, जैसे आध्यात्मिक गुरु संत होते हैं, लेकिन वो संत नकली हैं, उनका ज्ञान कंप्लीट है नहीं, जिस कारण से अब सतगुरु शब्द लगा दिया। तो यहां लिखा है कि जो आप जी को सतगुरु मिल गए उनको गुरु कहो चाहे सतगुरु कहो, वो तो प्रत्येक व्याख्या में पूर्ण है, प्रत्येक संज्ञा में, प्रत्येक उपमा में। तो कहते हैं गुरु मानुष कर जानते, यदि गुरु जी को तुम मानस मानते हो, सिंपल मैन मानते हो, ते नर कहिए अंध, वो ज्ञानहीन है, ज्ञान नेत्रहीन अंधे हैं, वह दुखी संसार में आ गए फिर काल के फंद, काल के बंधन। अब देखा अपने महावीर जैन की दुर्गति हुई, कहते ये संकट फेर रहेंगे जब सतगुरु मिल गए, सतगुरु को आपने एज ए गॉड रिस्पेक्ट नहीं किया, कंसिडर नहीं किया। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, और ओवें दुखी संसार में अग्ग काल के फंद। जैसे एक गणित का प्रश्न होता है, एक गणित के अंदर एक प्रश्न ब्याज का एक चैप्टर होता है, उसमें सपोज करना होता, मान लीजिए मूलधन 100 रुपए, जबकि वास्तविक मूलधन करोड़ों रुपए में होता है, उस करोड़ों रुपए के मूलधन को प्राप्त करने के लिए सपोज करना पड़ता है मान लीजिए मूलधन 100 रुपए, और जब तक हम 100 रुपए मूलधन नहीं मानेंगे, भले ही वो करोड़ों रुपए की तुलना में एक छोटी राशि है, तो हमारा वो प्रश्न हल नहीं हो सकता। इसलिए
आप जी ने गुरु जी को मान लो, गुरु जी भगवान, गुरु जी गॉड है हमारे, और फिर उनको जैसे हम परमात्मा के सामने जाते हैं, परमात्मा से जाएंगे हम, जैसे वह भगवान आ जाते हैं, यदि आप ऐसा ही व्यवहार करोगे ऐसे वैसे तो परमात्मा नाराज होंगे। तो परमात्मा नाराज ना होना चाहिए, परमात्मा के नाराज होने के कारण तो हम यहाँ कष्ट उठा रहे हैं। सतगुरु के दरबार में मेरी थर थर कांपे दे, ना जानू किसी बात से मारा टूट न जावे ने। इतना भय लगे परमात्मा गुरुजी के दरबार में आकर, परमात्मा तुल माने, और ऐसे कोई बात, ऐसा मन में कोई विचार, कोई ऐसे अवगुण ना हो जा जिससे गुरुजी का और आपका प्रेम भंग हो जा, यानी जो श्रद्धा आपकी है उसमें कोई फर्क पड़ जावे, वो नहीं पढ़ना चाहिए, फिर व्यर्थ हो जाएगा आपका जीवन। तो इस प्रकार हमने गुरुजी को परमात्मा मान के, क्योंकि जाना है भगवान के दरबार में, और वहां पर सबसे पहले इस दास के रूप में आपको प्रभु मिलेगा, परमेश्वर मिलेंगे। त्रिकुटी पे, त्रिकुटी पे जाकर तुम्हारी वहां छटनी होएगी। यहां आप जी ने जैसी श्रद्धा इस दास के प्रति बनाई है, जैसे पौधे का, जैसे गेहूं का पौधा पक जाता है, बाली आ जाए ऊपर, अपने आप पता लग जाता है कि ये गेहूं है, और उसके अंदर एक कोबाड़ भी होता है, गेहूं जैसा डंगा खरपतवार, एज इट इज सेम टू सेम प्लांट होता है वो, दोनों एक जैसे पौधे होते हैं। लेकिन जब वो परिपक्व हो जाते हैं और दोनों के ऊपर वो बाली आ जाती है, तब उनका पता लगता है ये खरपतवार है, ये गेहूं है। ऐसे ही जिन्होंने यहां गुरु जी को परमात्मा तुल जानकर और निष्कपट भाव से, सच्ची श्रद्धा से, साधना सेवा भक्ति कर रखी है, तो त्रिकुटी बजाते ऐसे बाल लकड़ाओगी थर अपने आप, और पता लग जाएगा कि यू खरा हर यू खोटा। तो उस खराब पौधे ने निकाल के किसान बाहर फेंक देता, फिर वो आग में फूंक दिया जाता है, व्यर्थ होता गधे खाऊं से। और गेहूं को अपने ला करके कोठिया में डाल लेता है। तो ऐसे ही आप जी ने जैसे भाव से, जैसी श्रद्धा, जैसी भक्ति सच्चे दिल से यहां की है, तो वहां आपका फल आपके सिर पर लिखा पाओगा, और वहां फिर आपकी कैसी गतिविधि होगी, आपकी कैसी वहां भगवान के प्रति श्रद्धा होगी, तो वहां उसी का, वहां एक समझो परीक्षा एग्जाम है आपका। और वहां भी आपने ऐसा ही मन में दोष कपट रखा जैसा यहां रख रहे हो वैसा ही वहां होगा, जैसा दिन में करते हो वैसा स्वप्न आओगा। अब जैसे आप जी को स्वप्न आते हैं, तो जैसा व्यवहार आप यहाँ इस दास के साथ कर रहे हो वैसा स्वप्न में आएगा, तो इसी प्रकार वहां भी एक स्वप्न होगा, आप होगे परमात्मा होंगे इस दास के रूप में। तो वहां अगर आपने, आपकी रिहर्सल में कमी रहेगी, आपने ट्रेनिंग ठीक ना करी, तो वहां से रिजेक्ट कर दिए जाओगे। फिर वो व्यक्ति कई हजार युगों तक मनुष्य जीवन भी प्राप्त नहीं करेंगे, तो वहां से गिरे हुए इंसान फिर बहुत देर से संभलते, क्योंकि इतना दिन और संग रहे और इतना ज्ञान सुना, फिर बकवाद भर ली। तो इस प्रकार पुण्यात्मा, आप जी ने बहुत उत्तम स्थान पर जाना है, और उसके लिए उत्तम ही कर्म आपने करने होंगे। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिए मिलाए। गुरु जी का कितना महत्व बता रहे हैं परमात्मा कबीर जी। जब तक आप जी की इतनी श्रद्धा गुरु में नहीं होगी, और जैसी श्रद्धा गुरु जी में है उतनी ही परमात्मा में काउंट होगी, माननी जाएगी। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं वहां, मान लीजिए परमात्मा दोनों रूप बना के खड़ा हो जा, एक दास का रूप और दूसरा अपना ओरिजिनल रूप, तो कहते हैं वहां भी परीक्षा होगी किसके लागू पाए। सबसे पहले कहते हैं बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद मिलाए, अपने गुरु जी के ही चरणों में गिरना, वहां पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर सच होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको, यहां भी ऐसा ही होगा, ये नियम है। और तुम चरण छुओ और किसी
सासू गया कि ससुरे गया कि और बड्डे छोटे गए, सपने में ना छूने चाहिए अपन। भाव ये नहीं है कि हमने किसी का सत्कार नहीं करना है या किसी को प्यार नहीं देना है या शिष्टाचार खत्म कर देना है, नहीं, वो शिष्टाचार के तरीके गलत कर लिया हमने। और पुत्र वधु सासू के चरण छुया करे, चरण दाबेगी नू और वह नू कहे बेटी बूढ़ सुहागण हो, दूध दान आओ कुत्ता फड़ियो। अब वो छोटी मोटी को पूर्व जन्म की को कमाई हो अब वो उतनी सौंप दी, आप खाली खोखा होगी। हम चरण इसलिए छुया करते कि ये खुश होकर अपना आशीर्वाद दे दे, कुछ लाभ मिले। और चरण छोड़ते कौन सा बुढ़े के पैरों का दर्द ठीक हो है। अगर मान ले किसी बुजुर्ग के चाहे बड्डे के चाहे छोटे के, आपसे छोटे बाण बेटी भाई जैसे बहने हैं, आपसे बड़ी सास का की पिंडी दुखे हैं, तो उनके पैर दबाओ खूब अच्छी तरह। एज है मरीज जान के आवश्यकता समझ गए वो बेसक सेवा करो, मालिश करो, सिर में करो, पैरा में करो, तलव्या में करो, है किसी तरह सेवा करो, पां दो गर्म पानी ते जब को ठंड लाग रही होता है, सेवा कर दो। लेकिन एक औपचारिक जो चरण छूने ये भक्ति मार्ग में बाधक है, ये नहीं करना। तो वहां गुरु गोविंद दोनों खड़े और किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। तो वहां गुरु जी के ही चरणों में समर्पित होना है तो भगवान प्रसन्न होगा। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। उन आत्माओं इसको एक एग्जांपल द्वारा समझाते हैं, जैसे आप जी के पुण्य जब तक चल रहे हैं पूर्व जन्म के, तो तब तक आपको कोई आपत्ति नहीं, संतान भी अच्छी है, पुत्र पुत्री होगी, उनकी शादी विवाह भी कर दिए, उनको भी संतान होगी भगवान उनके संस्कार वश। और जब तक आपके पुण्य हैं तो आप जी को कोई आपत्ति आई नहीं। जब आपके पुण्य अक्षीण हो जाएंगे उसके बाद आपके पापों का दौर शुरू होगा, तो पापों का दौर जब शुरू होगा तो कष्ट पर कष्ट आएंगे। जो व्यक्ति घने दुखी हो जाते हैं ना, वो क्या कहा करें कि हमारा राम रुस गया, हमारा राम रूठ गया, हमारा भगवान रुष्ट हो गया, इसलिए हम पापति आएगी। अब राम रुस गया, पुण्य अक्षीण हो गए, पाप शुरू हो गए, तो कहते हैं कबीर हरि जय रूठ जा, राम रुस गया आपका, गुरु की शरण में जावे, कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जाए, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। आपका राम रुस गया, दुख हो गया, आपत्ति आई, तो संत की यानी परम संत की शरण में जावे गुरु। अब गुरु कहो चाहे सदगुरु कहो, क्योंकि अब समझ गए इस बात को कि झूठे जो नकली हैं वो गुरु भी नहीं है लेकिन गुरु कहलाते, इसलिए सतगुरु कहा। लेकिन अब सतगुरु कहो चाहे गुरु कहो, आपको समझ में आ गया कि जो पूरे संत है उन्हीं के विषय बता। अब परमात्मा क्या बताते हैं, पर्वत पर्वत में फेरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले हैं जिन सारे सब काम। परमात्मा की तलाश में ना जाने कहां कहां पर्वतों पर गुफाओं में बर्म्या भटक्या, और संत मिले भगवान जैसे, संत मिल गए, परम परम संत मिल गए, वो सुख दिए जो भगवान दिया करता है। जैसे आप जी एक तरफ तो हैंड पंप है जिसमें से जल निकलता है मीठा, और एक तरफ आपके घड़े में जल है। जब तक आपके घड़े में जल है और आप कहीं घर पे हो चाहे कहीं मजदूरी कर रहे हो, दुकान पे, खेत में, कहीं पर भी हो, तो आपको कोई आपत्ति नहीं, प्यास लगी गट गट पानी पी लिया। और जब मटके का जल समाप्त हो गया घड़े का, फिर आपत्ति आई, समस्या आ गई, प्यासे मर गए, फिर चले कहां, हैंड पंप के पास, हैंडपंप पर गए और वहां हैंडपंप की सेवा की और फिर मटका भर लिया, सेवा में पूजा,
यानी जो उसका विधि विधान है वो हलाया, उसको डंडा फेरा, उसका हैंडपंप का हैंडल, और जल भर लिया, मटका भर के आ गए। तो आप जी के पुण्य क्षीण हो गए, आपका मटका खाली हो गया। कहां जाइए, संत के पास, गुरु जी के पास, और जैसे गुरु जी साधना सेवा बताए वो हैंडल लाइए, यानी सेवा कीजिए, पूजा कीजिए, साधना कीजिए, फिर मटका भर जाएगा। और यदि कहते गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अपने आत्मा एक तरफ हैंडपंप है और एक तरफ एक मटके में आपके घड़ा भरा दे रहा है, और एक तरफ परमात्मा खड़े हैं, एक तरफ गुरु जी खड़े हैं। आपसे परमात्मा प्रसन्न करेंगे, तुम किसको चाहोगे? हैंड पंप को चाहेंगे हम, बुद्धिमान होगा तो। कोई न कहे तुम मटके का जल चाहिए या हैंड पंप, तो हैंड पंप में तो 1000 मटके भर ले, और हैंड पंप, अब जैसे परमात्मा कहते हैं कबीर हरि के रूठते गुरु की शरण में जाए, और कह कबीर गुरु रूठ गए तो हरि ना करे सहाय। आप जी ने हैंड पंप की ठीक मेंटेनेंस करी नहीं, हैंडलिंग ठीक करी नहीं, हैंड पंप खराब हो कर दिया। हैंड पंप खराब हो गया तो गुरु जी रूठ गए, अब वो जल नहीं मिलेगा, वो जल मिलेगा नहीं जो हैंड पंप से मिलना था। जब आपका राम रूठा, गुरु जी के पास गए, आपको विधि बताई, साधना दी, अपना आशीर्वाद से कुछ लाभ दिया, और यदि आप जी ने गुरु जी को रुष्ट कर लिया, हैंड पंप ही खराब कर दिया, तो फिर क्या मिलेगा? हैंड पंप खराब होगा तो बेसे गलाए जाइए डंडे ने, कुछ लाभ नहीं होना उस हैंडल से। गुरु के दिल से उतरे वो शब्द बेहू ना हो, ताको काल घसीट ही राख सके ना को। कई कहे घर में भक्ति कर लेंगे, क्योंकि यहां आते हैं उनके मन का दोष निकलता नहीं, और फिर उनको हम यहाँ खुरका धमका देते हैं, भाई बीड़ी शराब मास तुम्हारा को तुम छोड़ नहीं रहे तो मत आया करो, फायदा क्या होगा? या कोई और गलतियां करते हैं, मन में दोष नहीं निकलता तो वो फिर घर छोड़ जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, खा लो धक्के। पृथ्वी पर कोई नहीं संत आज के दिन, 21 ब्रह्मांड में नहीं है। और जानबूझ साची तजय करे झूठते ने, और ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में भी ना दे। तो यहां से जो आप गुरु जी रूठ जाते हैं, गुरु के दिल से उतरे, जो गुरु जी के मन से उतर गया कि आदमी ठीक होना, या बहन बेटी भक्ति नहीं कर रही है, या बकवाद करते हैं, ड्रामाबाजी करें, तो वो दिल से उतर गए तो उनका नाम कट गया। और कहते उनको काल घसीट ही राख सके नहीं कोई। तो यहां क्या बताए हैं कि गुरु के रूठते हरि की शरण में जा, और कह कबीर गुरु रूठ गए तो हर नहीं करे साए। एंड पंप खराब कर लिया तो आपका जो है जल ने लाभ देना बंद कर दिया, जल मिलेगा ही नहीं। तो इस प्रकार परमात्मा बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं अंधे, होवे दुखी संसार में फिर आगे काल के फंदे। यहां भी दुखी होंगे वो व्यक्ति जिस किसी पुण्यात्मा ने यहां पर इस दास के साथ रहकर भक्ति करी 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष, और फिर अपनी नालायकी ते को गलती करके यहां से निकल गया और चला गया कहीं और धक्के खा भैया घर पे रहता है। तो उसको जब तक उसके पुण्य इस 3 साल में किए हुए सत साधना और भक्ति के जो पुण्य हैं वो जब तक उसके चलेंगे, वो मटका भरा हुआ है, भर लिया उसने, और अग एंड पंप खराब कर दिया। जब तक वो घड़ा पानी का चल रहा है, रोजाना 1 गिलास 2 गिलास 4 गिलास घट ही रहे, उसमें प्रवेश नहीं हो रहा, आउटपुट ही है, इनपुट नहीं है उसके अंदर, तो एक दिन वो अक्षीण होंगे। हो सकते हैं वह 2 वर्ष में हो 4 वर्ष में हो 5 वर्ष में हो 10 वर्ष में, फिर उनकी वही दुर्गति फिर शुरू हो जाएगी, क्योंकि हैंडपंप खराब कर दिया। और जो हो गए गुरुद्रोही, ठीक है ऐसे व्यक्ति है नया, फिर दुखी सुखी बान लग रहे हैं, 1 साल माया कोई 4 साल माया धक्के खा के बिरान मैटी होली, दोबारा फिर आ रहे, आना चाहिए कोई बात नहीं, 1-2 बार हम खुरकावा धमकावांगे, लेकिन हमने तो उतने अच्छे लगते हो अपने बच्चों की तरह। और जो हो जाते हैं गुरुद्रोही,
उसको तो कदे असंग जन्म भी भगवान मनुष्य जन्म नहीं देगा। ठीक है, अब तक वो पुण्य है, उसके चलते रहेंगे, जितने 1 वर्ष चलेंगे, 10 वर्ष चलेंगे, 20 वर्ष चलेंगे, आगे वह दुर्गति होगी, इस प्राणी की सोची भी नहीं जा सकती। तो पुण्यात्माओं, जय इब कै सतगुरु मिले, जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख अखोरो चरण ऊपर शीश धरू, कहो जो कहनी हो। अब क्या बताते हैं, ये जो वाणी हम बोलते हैं प्रतिदिन, उनका अब निष्कर्ष समझ में आएगा आपके। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम जैसे तुमको बहुत हैं, तुम जैसे हमको नहीं। अब जब सही ज्ञान आपको हो जाएगा, उससे मैं समझ में आओगी कि हे परमात्मा, हे गुरु जी, आप हमसे भूलियो मत, आपके पास से लाखों लोग आ जाएं, क्योंकि सब दुखी आत्माएं आकर यहां सुख ग्रहण करती हैं, तो वो तो आपको चाहेंगी, आप हमने ना बोलिए, क्योंकि आपको तो मेरे जैसे बहुत मिल जाएंगे आत्माएं भगत, लेकिन मुझ भगत को आप जैसे सतगुरु नहीं मिलेंगे इस पृथ्वी पे। जय इब कै सतगुरु मिले, सतगुरु नकले गुरु तो मेरे मिल लिया हमने, सब दुख आखों रो। ये बातें हैं कोई आत्मा जो दूसरे पंथों के पास, संतों के पास 20-20 वर्ष 30-30 वर्ष बर्बाद करके रोते हैं, यहां पर उनकी आंखों के आंसू नहीं सूखते, जब ये ज्ञान समझ में आ जाता है। रात को भी कहते बैठ कर रोते, हमारा क्या हाल हो गया, ये कहां गया, इतना जीवन बर्बाद कर दिया हमें, हैं ऐ परमात्मा बड़ी दया हुई, अब सतगुरु का मार्ग मिल गया। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आंखों रो चरणों ऊपर शीश धरू, कहूं जो कहनी हो। कबीर साई मिलेंगे, वो पूछेंगे कुशलात, आज अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। अब जो दूसरे पंथों से आते हैं, जब उनको पता चल जाता है, क्योंकि इस ज्ञान पुस्तक हमने छापी है ज्ञान गंगा, उसको पढ़कर अब दूसरे पंथों की पुण्यात्माएं रो रो कर आ रही हैं, भटक रही हैं, और बताती हैं कि इतने दिन मैंने वहां बर्बाद कर दिए, कुछ नहीं मिला, ये नुकसान हो गया, इतना जीवन बर्बाद हो गया। कबीर साई मिलेंगे, पूछेंगे कुशलाते, आद अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। और फिर कहते हैं गुरु जी आप ना भूलियो हमें, और आप भूल गए फिर कहां जाएंगे, हमें कोई ठिकाना नहीं इस पृथ्वी पर, हम जैसे तो आप जी को बहुत अच्छी आत्माएं और भी बहुत मिल जाएंगी, लेकिन आप जैसे गुरुदेव हमें नहीं मिल पाओ।

सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस, यूनिट नंबर 124, 4774 वेस्ट विंस ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते, यानी 403-605-6300 ते।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे 7 दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश किते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6667 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकदे हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जा फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੇਅਰਿੰਗ ਹੋਮ ਹੈਲਥ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੇਅਰਿੰਗ ਹੋਮ ਹੈਲਥ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 124, 4774, ਵੈਸਟ ਵਿੰਸ ਡਰਾਈਵ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ, ਕੈਲਗਰੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕੇਅਰਿੰਗ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 403-605-6300 ਤੇ, ਯਾਨੀ 403-605-6300 ਤੇ।
2: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਰਾਸਾ ਪਲੇਡੀਅਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे 7 दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6667 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316, 27 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं तारा कैसडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू, साउथ वेस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन पैटियो डेक प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111 एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144-3670 त्रेंट एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है, यूनिट नंबर 210-2323 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जां फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: तन ओ मस्तक, तन ओ

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है यूनिट नंबर 2121-3961 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलग्रीज इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-3332 नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

कैलगरीज 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 एफएम ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th Street, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी आज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है, यूनिट नंबर 4612, 6th Street, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामां संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामां संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लैण लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हॉल दा पता है, यूनिट नंबर 2850, होपवेल प्लेस, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरीज इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जा फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: श्री दरबार साहब अमृतसर तो गुरबाणी कीर्तन दे सरवण ले आज ही अपनी आकारा ते करां दे रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम ते ट्यून करो। श्री दरबार साहब अमृतसर तो प्रसारित गुरबाणी कीर्तन हर रोज सवेरे 4 तो 8 बजे तक ते शाम 5 तो 6 बजे तक रिले कीते जांदे ने। पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम कैलगरी विच इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो है।
1: ज्यादा जानकारी ले कॉल कर सकते हो, फोन नंबर है 403-238-6060 या विजिट करो www.

पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सग जगत चंगी आईया बुरी आईया वाचे धर्म हदू करमी अपो अपनी के नेड़े के दूर।

होए प्रभ मेरा हम अवगुण परे। एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै पूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सुनाई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद

0: तेरा सेंटिटो जाओ दाता करता यार तू दूसरे वे करे पकाओ तू जानो इस सबसे दिल ऐसे जिंदगाओ तेरा सेंटिटो जाओ तेरा सेंटिटो जाओ
1: हर प्रेम बाणी

0: જીવન મફત સવાકીએ માર જીવ મરિયા જન નાનક સતગુર મેલ હર જગ દતર તરિયા
1: સલોક મહલા પહેલા सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फुरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदा खै लख करोड़ सच्चा सब तान सच्चा सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कच न कच महला पहला
0: बड़ी बड़ियाई जा बड़ा नाउ बड़ी बड़ियाई जा सच ने आउ बड़ी बड़ियाई जा ने चल थाउ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣਿਆ ਲਾਓ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁਝੈਸ ਪਾਓ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਜੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾਤ

विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरे जल्द विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड विडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद वेजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत।

0: करिया सफे गोपिया पहर कान गोपाल गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार सगली ताती माल तन वर्तन सब जंजाल नानक मोसे ज्ञान विहूनी खाए गया जमकाल महला पहला
1: वायन चिले नचन गोर पैर हलायन फिरन सर उडरामा झट पाई विखे लोक सह कर जाय रोटियां कारण पूरे ताल आप छड़े तरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपौ निरंकार सच नाम जागा किया सगल जहान सेवक सेवह कर्म चढ़ाओ पिनी रांझना मन चाओ सिखी सिख्या गुर विचार नदरी करम लंगाए पार कोलू चरखा चक्की चक थल वारोले बहुत अनंत लाटू मदानियान गा पंखी पौंदिया लैना सा सुवे चाड़ पवाई जंत नानक पौंदिया गणतनंत बंदन बंद पवाए सोए कृतन चै सब कोए नच नच हसै चली सी रोए उड़ना जाही सदना होए नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी ना।

0: जोड़े चंगा अपना त्रिकुनो नी सुधाई है जे जरवाना पर है जरवेस करे दी आई है पूरे ना भरिए पाइए पूरे ना भरिए पाइए
1: पंथ दसावा नित खड़ी मन जोर बन बाली राम दाजे हर हर ला

0: चाप रखन कर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह छुटाया। उत्तम में विचार जिन सच्चे सिउ जगलाया। जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया।
1: कर कृपा वसो मेरे हृदय होय सहा।

पुरखा बिरखा तीर्था तटा में गाखे तहा दीपा लोहा मंडला खंडावर पंडहा अंडज जेरज उत्पुजा खानी से तजा सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए कै संभाले सबना जिन करते करना किया चिंता पे करनी ता सो करता चिंता करे जिनो पाया जाग तिस जो

कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार, कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार, कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप अपार।

जोधा का विचार मोर पंडत मत हुज्जत संजा करे प्यार तरमी तरम करे गवावे मगे मुख द्वार जदि सदावे जुगत न जाने छड़ बह कर बार सबको पूरा आपे होवे कट न कोई आखे पत प्रवाणा पिछे पाई है नानक तुलिया जापे महला पहला।

0: न कोस न छोटा, करत विकार दहु कर चारो, मित्र न पुत्र कृतर साजन साख, उल्टत जात बिरंकी शार, दीन दयाल पुरख प्रापूरन, छिन छिन सिमरो अगम अपार, श्री पतनाथ शरण नानक जन, हे भगवंत कृपा कर तारो, हे भगवंत कृपा कर तारो।
1: प्राण मान दानमक जोहन, हीत चीत दे ले ले पारी, साजन सैन मीत सुत पाई, ताहूं ते लै रखी निरारी, पावन पावन पूरक मावन, ए विद करत औ तंजारी, कर्म धर्म संजम सुचनेमा, चंचल संग सगल विधारी, पस पंखे बिरख स्थावर, बहु बिद जोन परम्यो अत पारी, खिन पाचसा नामने सिमरिउ, हिन्ना नाथ प्राण पासारी, खान पान मीठस भोजन, अंत की वार ओत कथकारी, नानक संत चरण समुद्रे, और माया मगन चले सब डारी।
2: ब्रह्मा दीक्षित संत मुनीसर, रसक रसक ठाकुर गुण गावत, इंदर मुनिंदर खोज ते गोरख, तरन गगन आवत पुंतावत, सिद्ध मनुख्य देवर दानव, एक तिल ताको मर न पावत, प्रिय प्रप्रीत प्रेम रस भक्ति, हर जनता के दर्श समावत, इसे त्याग आन को जाचा, मुख दंत रसन सगल कस जावत, रे मन मूर सिमर।

आकाश नामावत बिस्टा अस्त क्रिम उदर परयो है। दह दिस ताए महाबिखिया को पर धन छीन अज्ञान हरयो है। जोबन बीत जरा रोग ग्रस्यो जम दूत।

पंजन हर साधक चरण तोर जन बांछ सुख नानक एहो पाया फिरत फिरत तुमरा द्वार आया पंजन हर राया साधक चरण तोर जन बांछ सुख नानक एहो पाया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुजरी महला पंजवा जिस मानुख पह करों बेनती सो अपने दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या तिन भौ सागर तरिया।

0: आधार में राजन पुखा सब गवाइया
1: शांत सब मनवाई वसे आज ने अच्छा सब जाइया
0: सदा कुर्बानक तागुर बिट्टों जिस दिया आए बड़े आइया कहलन को
1: सुनो संत।

0: अणज सुनो बट पाप क्यों सकल मनोरथ पूरे दुख रोग संता पुत्र सुनी सच्ची बाणी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे पर पूरे बलवंत नानक गुरु चरण लाग वाचे अनहद तोरे।
1: बोलो जी वाहेगुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमरकै गोर नानक लई त्याए फिर अंगद गोर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद ना सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निधा वैताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के

0: अगे वस जानिए पितरी चार करे वड़िए है हाथ दलाल के मुसफिए करे नानक गैसो मिले जे खटे काले दे महला पहला
1: जो जो

द्रवाट पर खर्च मंगा जब देता काल दीवाने को कलम का हम आत्मा में दर ले लिखा फिर छुटे नान का जो तेल तोड़िया पे ही करना पियो कलिया पे इतने तालिये दिखता अपना कर कच्ची पक्की सारी जो है सचल सी सब कोई आई बारी जिसकी जी प्राण है क्यों साहिब मनोब सारी है अपनती अपना आपे ही काज सवारी है काज सवारी है काज सवारी है।

खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

0: बड़ी बड़ी उम्र का पार तेरा मर्तबा रंग रंग देखना जब करतबा जी आमद जी सब तू जानला सब तेरे बस तेरा घर भला तेरे करण तो बधाई तुझ कर मन मत्ता ते जपना बजर सर्व कला पर दिस है जत कता अर्ग दासन दास तो देहा के बिन बता तेरा तेरा नाम सत है वाहिगुरु
1: बड़ी बड़ी हूं बढ़ाया पार तेरा मर्तबा रंग परंग ने एक ना जापन करतबा जी अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे बस तेरा कर पला तेरे कर आनंद वधाई तुद कर मान महता तेज अपनाया पजर सर्व कला भरपूर दिस जत कता नानक दासन दास तुदे आगे बिन बता
0: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तृत महत दिवस रात दुदाई दाया खेले सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचै त्र महदूर करमी आप अपनी किनड़ै के दूर जिनी नाम त्याया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की
2: बोला जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगौती जी सहाय वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवी प्रथम भगौती समरकै गुर नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नाउ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईऐ जैस डठे सब दुख जाए तेक बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवे ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे पंजा प्यारियां सोहां साहिब जादियां चालियां मुकतियां हठियां जापियां तापियां जिन्ना नाम जपिया वंड छगिया देख चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे जिन्ना सिंघा सिंघड़ियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरुद्वारें दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सवासां नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु बोलो जे पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहेगुरु बोलो जे प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु

0: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैंड लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसे भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलने वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिनाज स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह दी जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फेशिया स्मार्ट ट्रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। कैलगरी दे इक्को एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो ते आओ हुण सरवण करिए गुरमत विचार भाई पिंदरपाल सिंह जी दी रसना तों।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616।

0: पर संपर्क करें।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा ABM कॉलेज के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह के हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स की जानकारी लेन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साड़ी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रोंग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

कैलगरी दे इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो ते आओ हुण सरवण करिए गुरमत विचार भाई पिंदरपाल सिंह जी दी रसना तों।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue Northeast Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हाल दा पता है, यूनिट नंबर 2850, होपवेल प्लेस, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फिश या स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 ट्रेंट एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। और जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।

प्रोग्राम का यह हिस्सा ABM कॉलेज के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह के हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स की जानकारी लेने ले कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी ले साड़ी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आना चाहता है या तुसी कैनेडा विच रहंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लेनी चाहते हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो bobby.dodd@403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-453-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, North East, Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैन लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जा फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 त्रेंट एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।
0: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 एफएम इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।
3: पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
4: संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बुझे शब्द जोगेरे नू, संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बुझे शब्द जोगेरे नू, ये मुर्दों से ती प्रीत लगाव न जाने सतगुरु मेरे नू, मुर्दों से ती प्रीत लगाव न जाने।

श्वेत छतर सिर मुकट बेराजे, देखत ना उस चेहरे नू। श्वेत छतर सिर मुकट बेराजे, देखत ना उस चेहरे नू। ऊंची थड़ियां खेती बोवे ये भूल गए नज डेरे नू। ऊंची थड़ियां खेती बोवे ये भूल गए नज डेरे नू। मत दे दी बेरे नू, मत दे दी है बालम बेरे नू। मत दे दी है बालम, ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दासिये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू। गरीब दासिये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू। मत दे दी है बालम बैरे नू, मत दे दी है बालम। ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दासिये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू। गरीब दासिये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू। मत दे दी है बालम बैरे। आत्मा अब रो रही है, परमात्मा से पुकार करी है कि मेरे को तो इस काल ने काल रूपी इस मन के साथ बांध दी, इसके साथ मेरा मेल कर दिया। इस काल ने अपना एजेंट छोड़ रखा मन, आत्मा के साथ ये नकली मालिक बन गया इसका। मन की और आत्मा की खुराक अलग अलग। आत्मा की खुराक परमात्मा की भक्ति, धर्म पूर्ण करना, विनम्र रहना, और मन की वृत्ति बकवाद करना, बेमतलब अहंकार बनाना, रगाने सुनना, मांस खाना, शराब पीना, ताश खेलना और बकवाद, राजनीति में गप्पे मारना। और भक्ति करनी तो उल्टी करनी, अच्छी भक्ति नहीं करने का। अब जैसे कोई साधना कर रहा है, कोई सोमवार का व्रत रखा है और उसने कोई ना कह देना शनिवार का व्रत बहुत लाभ देता, वो शनिवार का भी शुरू कर देगा। और उसको कोई नौका दे वह ना मनसा देवी पर, और वहां एक धागा बांध जाओ ना हरि मनोकामना पूर्ण, वहां भी भाग लेगा। और कोई इसने नौका ना कहा जा सतलोक आश्रम बरवाड़ा में, नौका ना वहां के दरिया है, और वहां तो दरका रहता मनसा देवी पर, पूरा मर 2500 आदमी मर गए पाछे उसके ऊपर है भगदड़ माच के। हर किता चक्कर कोई ना हरियाणा की तो कुत्ता की टांग टूट जाना आते जाते कुत्ते की टांग टूट गई। उसने भी चर्चा का विषय बना देंगे, विघ्न तार दे। एक व्यक्ति किसी को न्यू कहना कहा जा सत्संग में चल लेंगे, हमारे वहां सत्संग बहुत अच्छा होता है और सारी व्यवस्था बिछे बिछाए गदर ले है ऐसी रजाई में, बिल्कुल ताजी रजाई, ऐसी सर्दी में देसी घी का खान पान सारा फ्री है, और चल वहां चलेंगे सत्संग सुनेंगे। नो नो टाइम को ना एक भगत बताओ था कैसे, मैं एक अपने मित्र गांव खाता, उसने कौन था कहा वहां सत्संग में चलेंगे 3 दिन का सत्संग। बोला नो टाइम को ना इतने में एक व्यक्ति दूसरे ते ही बतावा था ना वहां कंपटीशन आ रहा, दूसरे गांव में कंपटीशन हुआ करो वहां, ये गाय को हर अग्नि गाणी हरियाणा के 5-6 पार्टी आ जाया करो, वो उस तो बढ़ कर वो उस तो बढ़ कर सुरीली आवाज से गाने गाते इकट्ठे, फिर उनको इनाम दिया जाता, उसमें कंपटीशन बोला। तो वो किसी और ने बतावा था, और जिसको उसने भगत ने कहा था चल सत्संग में, उस तो नाइट गया, उसने आप तो जाकर पूछा अरे किता रहा कंपटीशन कहाँ रहा है, अकवा फुलाने गांव में 5 किलोमीटर दूर वहां जा पहुंचा, रात तो राज राज का धाम है, फद्दड़ फद्दड़ 5 किलोमीटर साइकिल पर गया पैदल मर गया, और वहां बैठे जाकर देवी ना बैठे ऐसे रेत के अंदर उड़े मूतें बालक,
और वहां सारी रात दांदरे काट के ऐसी बकवाद सुनकर खुश होकर गया और नूके देख चाल सत्संग बना टाइम को ना कन्ना पे गटाल जा। आत्मा रो रही है कि इस मन ने यदि कोई अच्छी साधना पर लगाने की बात करता है तो यूं सुनता नहीं बहरा हो जाए और उल्टी साधना इसने बता दे खुश होकर करता है। पेट पलनिया चलते देखे नू खट्टू श्याम जी पर जावे या कोई और जाते हम भी जाते थे साला सर तो वहां देखे नू लेट लेट के कौन ही फूट जा बेचारे की और उनको एक नो कहते ने कहा जा वहां सत्संग में ना उड़ा के दरिया है वहां क्या रखा है उसके लिए बता रहे हैं। अब आत्मा रो रही है कि मैं तो दे दी बालम बहरे इस मन रूपी पति के इस बहरे के साथ मेरा मेल कर दिया संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बुझा समझ दो गहरे न आम आदमी कोई बता दे वह साधना शुरू कर दे और इस यथार्थ ज्ञान को प्रमाण के सहित बताया जाता कहते इसने ना माने और मर्दों से ती प्रीत लगावे जैसे को बाबा जी मर गया गांव में 100 साल पहले ऊड़ा माथा टेकन जाएंगे हमारे समाज की पूजा है और जिंदे संत ना पूछे आगे पूछते। अब जैसे कोई वैद्य था और बहुत अच्छा वैद्य था नब्ज पकड़ के दवाई देता था स्वस्थ कर देता था अब वो मर गया मृत्यु होगी उसकी यादगार बना दी एक प्रतिमा बना दी। अब कोई उस मर्द के पास वैद्य के पास मत्था टेक कर जाकर मैंने ठीक कर दे स्वस्थ कर दे अब नहीं कर सकता वह मूर्ति कुछ नहीं कर सकती ऐसा ही वैद्य खोजना पड़ेगा कहां मिले फिर वो नब्ज देख के वो दवाई दे तब रोग कटे। तो ऐसे ही संत ढूंढने पड़ेंगे वो संत बताएंगे नो कहे उन संता की तो मानते नहीं मुर्दों से ती प्रीत लगावे नहीं जाने सतगुरु मेरे नू उस संत को नहीं समझता जो हर तरह से हर महरम से परिचित है जो तत्वदर्शी है यानी पूरा खोजी है उसका स्वेत छतर सिर मुकुट विराजे और देखत ना उस चेहरे सब ने निराकार निराकार पगाटा जोड़ रखे है विष्णु जी की पूजा करे मूर्ति बना रहे हर कोई नो कह कैसे भक्ति करता ध्यान मेडिटेशन करता हूं भगवान कैसा है वो तो निराकार है पर विष्णु जी की किस लिए पूजा करता जो भगवान विष्णु भगवान नहीं है। ऐसी बालका वाली छुरी थी हमारी बिना ज्ञान के कहते हैं श्वेत छतर उस परम पिता के ऊपर छतर है जैसे इस दास के ऊपर इन भक्तान बना रखे है ये तो अपना आर्टिफिशियल है श्वेत छतर और सिर मुकुट सिर पे मुकुट है और देखत ना उस चेहरे में साकार है वो परमात्मा सतलोक के अंदर ये निराकार निराकार बताने में कैखे का पता नहीं इनका कोई अनुभव नहीं है। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज देखत ना उस चेहरे नू ऊंची थलियां खेती वो ये भूल रहे नजडेरे यानी कितना क्यों गरीबदास साहिब जी किसान थे और किसान लोग उनके आसपास आ जाया करते थे उनको उसी ढंग से यानी आम व्यक्ति को ही उन्होंने ज्ञान दिया है लेकिन उस समय जब ये बैठे हैं तो ऐसे व्यक्तियों को भी उसी तरीके से समझाने की चेष्टा की है जिससे वो समझ सकते हैं कि भी तुम ऊंची थलियां पर जाना पानी की व्यवस्था वर्षा हो जा तो बीज डाला जा सकता है अगर वर्षा ना हुई तो बीज भी खराब उसमें डाला हुआ ऊंचे थलों पर और एक डहर होती है समतल जमीन होती थी पहले साधन वर्षा का ही होता था सिंचाई का तो वर्षा थलियों पर वर्षा हुई भी उस डहर में आके जल रुकता था और जिसमें ज्यादा जल वर्षा का रुक जाता था उसमें ज्यादा उपज होती थी और वो डहर उपजाऊ जमीन होती थी। थलियों पर तो मनमाने एक मण भी ना हो एक एकड़ में वो तो एक दो मण हो जाए जब वर्षा ठीक होती रहे तो और डहर में हो जाए 40 मण 50 मण एक एकड़ में। तो कहते हैं तुम ऊंची थलियां यानी आन उपासना अन्य देवताओं की जो पूजा है वो ऊंची थली है और सतपुरुष परमात्मा की पूजा वो डहर है उपजाऊ स्थान है उसको तुम भूल गए जो घना धन दे यानी जिससे आपको अधिक लाभ। ऊंची थलियां खेती वो है ये भूल गए नज डहरे नू ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू जैसे कोई व्यक्ति
कोर्ट में मिल रहा है, किसी मित्र अपना कोई रिश्तेदार मिल जाता है कचहरियों में, और दोनों आत्मा हाथ में लाग रहे और ठीक है रिश्तेदार धगा मौज हो रही है, कोर्ट में मौज का के महादुखी व्यक्ति जा रहे कोर्ट में गिग्गी बंदी रहे कदे आज गवा जा आज वो फलाना ना आवर कदे न्यू हो जा, और वहां भी नौका मौज हो रही है। कहते तुम कहन तक सीमित हो मौज की, आड़ा मौज नाम की चीज नहीं, आपकी तो ऐसी स्थिति है। कबीर ये माया अटपटी, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आने अड़ी, किस किस ने समझाऊं या कुए भांग पड़ी। जैसे किसी ने एक मन भांग घोट कर कुएं में डाल दियो और उस कुएं के जलने से दूसरे आदमी पी ले, पीते ही उनकी एक जैसी शकल एक्टिंग है, ऐसे लड़खड़ा कर चलना और एंड वेंड बोलना। कहते इस काल ने इस त्रिगुणमयी माया की भांग गेर दी 21 ब्रह्मांडों में, और इसने ही पी कर तुम टीटी बने फिरो फाज। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। जैसे कोई शराब पिए पड़ा था दोपहर जून के महीने में, हरियाणा राजस्थान का स्थान, और धूप में पड़ा और पसीना पसीना जागा रे हैं, और सारा रेत में बुरा हाल हो रहा, और उसको कोई उठाता है कि उठ भाई तू यहां दुखी हो रहा है और गर्मी बहुत सता रही है, चल तुझे वृक्ष के नीचे बैठाता हूं। वो कहता है जोड़ दे मौज आ रही है एक तरफ। तो आज हम इस स्थिति में, इस काल के लोक में, यहां पर किसी को सुख नाम की चीज नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री बन रहा है एक पल की भी चैन नहीं है, सारी पृथ्वी का राजा है। यदि किसी को सुख भी है तो इस परमात्मा की भक्ति सत भक्ति से यहां भी सुख है, और फिर परम सुख स्थान को प्राप्ति होगी। ये संसार समझदा नहीं कहदा श्याम दोपहरे नू, इस काल के लोक में इतना कष्ट उठा रहे हो, इससे मौज मान रहे हो तुम। गरीब दासिये वक्त जाते है रोगे इस पैरे। ये मनुष्य जीवन एक बार आते छूट गया ना आपके, कहते कुत्ते की तरह रोया करो ऊपर न मुंह करके। गरीब दास ये वक्त जाते है रोगे इस पैरे नो, ये मनुष्य जीवन ऐसे बर्बाद हो गया, वक्त भक्ति बनी नहीं, परम संत मिले नहीं, तो रोया करोगे इस समय को याद करके। फिर परमात्मा कहते हैं फिर क्या बनेगा, आछे दिन पाछे गए गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के एक रह जो चिड़िया चुकी खेत। जिस लोक में हम रह रहे हैं यह लोक काल भगवान का है, और हम अपनी अज्ञानता के कारण इस काल के साथ इस लोक में आ गए हैं। जो हमारे पुण्य थे वो इसने समाप्त करवा दिए, जो हमारी पूंजी हम सतलोक से साथ लेकर आए थे वो स्वर्ग के अंदर इसने विनाश करा दिए, उसके बाद इसने हमें यहाँ पृथ्वी पर पटक दिया। ये एक कैद है, एक जेल है, यहाँ पर रोके रखने के विधि तरीके इसके भिन्न हैं, और यहाँ इस काल के जेल की 3 जेलर बना रखे हैं इस काल ने, जो हमें यहाँ व्यवस्थित रखते हैं, इनके अपने अपने एक एक विभाग बांट रखे, जिस कारण से हम यहाँ इतने अज्ञानी हो गए, हमें अपने मूल स्थान की याद भी नहीं रही। इस काल भगवान ने, जिसको यहाँ ब्रह्म बोला जाता है, ब्रह्म कहा जाता है, इस ब्रह्म ने कोरा अज्ञान प्रकाश करवा दिया, अज्ञान का प्रचार करवा दिया, यथार्थ ज्ञान को छुपा दिया परमेश्वर पूर्ण परमात्मा ने। इस काल को 5 वेद दिए थे, 5वां वेद सूक्ष्म वेद है, उसको इसने समाप्त करा दिया, छुपा दिया, नष्ट कर दिया, और 4 वेद यहां प्रचार करवा दिए। वो 4 वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, श्यामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों में केवल ब्रह्म तक की ही साधना का वर्णन है,
और जानकारी पूर्ण परमात्मा की है, जो समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, जो सबका मालिक है, जिसने सारी सृष्टि रची है। उस परमात्मा के विषय में भी अत्यधिक जानकारी है, लेकिन वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि इन चार वेदों में केवल ब्रह्म तक की है। तो इससे सिद्ध है कि ये चारों वेद इनकम्प्लीट हैं, अधूरे हैं। ये अधूरा ज्ञान हमारे को दे दिया और हम इस अधूरे ज्ञान को संपूर्ण ज्ञान मान के, और जैसा भी ऋषि महर्षियों ने निष्कर्ष निकाला अपने ही अनुभव से, उसी को आज तक हम सुनते सुनाते रहे। वेदों में प्रमाण है कि वो परमात्मा स्वयं ही चलकर आते हैं और अपने यथार्थ ज्ञान को वो स्वयं ही अपनी प्यारी आत्माओं को बताते हैं। फिर वो पुण्यात्मा अन्य अपने साथियों को, भाई बहनों को वो यथार्थ ज्ञान कराते हैं। लेकिन काल के दूत, काल के द्वारा प्रेरित संत ऋषि महर्षि मंडलेश्वर आचार्य, ये उस भ्रमित ज्ञान से अधिक भ्रमित रखते हैं और वो प्रचारक ज्यादा होते हैं। परमात्मा से परिचित व्यक्ति पुण्यात्माएं बहुत सीमित होती हैं। तो जिस कारण से वो यथार्थ ज्ञान जन साधारण तक नहीं पहुंच पाया, उसका मूल कारण ये रहा कि पहले सभी अशिक्षित हुआ करते थे। प्रत्येक युग में एक विधान बना दिया था इन ऋषियों ने, अपने आप ही एक विधान बना दिया कि ब्राह्मणों के बच्चे विद्या ग्रहण करेंगे, वो सदग्रंथों को समझेंगे और फिर उनका प्रचार, परमात्मा की महिमा अन्य जनता को वो बताया करेंगे। तो इस बात से सभी सहमत हो गए भी ठीक है, हम व्यवसाय करते हैं, अपना रोजगार में लगे रहते हैं, हमें इतना समय नहीं है पढ़ने का, अच्छी बात है। और जो परमात्मा की कथा प्रचार किया करते थे उनको वो अन्य वर्ण, तीन वर्ण, चार वर्ण बनाए थे, एक ब्राह्मण, वैश्य, अक्षत्रिय और शूद्र। ब्राह्मण वर्ग केवल शिक्षा ग्रहण करता था, तीन वर्ण उन्हीं ब्राह्मण वर्ण से सुने हुए ज्ञान को ही स्वीकार करते थे और उनको दक्षिणा दिया करते थे। ये रूटीन अभी तक चलता रहा। अब वो जितने भी ऋषि थे, ब्राह्मण थे, गुरु थे, वो तत्व ज्ञानहीन थे, क्योंकि ज्ञान कहां से प्रारंभ हुआ? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी के वंशज ब्राह्मण कहलाते हैं, वो ऋषि महर्षि कहलाए। और ब्रह्मा जी को स्वयं ज्ञान नहीं, ब्रह्मा जी स्वयं वेदों से अपरिचित, क्योंकि वेद, चारों वेद इनकम्प्लीट नॉलेज रखते हैं, इनकम्प्लीट ज्ञान है। और ब्रह्मा जी ने उन्हीं वेदों को पढ़ा और समझा जो इनकम्प्लीट अधूरा ज्ञान है, और साथ में हठ योग भी करते रहे। तो ब्रह्मा जी से विष्णु जी और ब्रह्मा जी से ही शिव जी ने अध्यात्म ज्ञान को ग्रहण किया। अपुण्यात्मा परमेश्वर की वाणी में आता है कि तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। सत्संगी का अर्थ होता है जिसके पास सच्चा ज्ञान हो, वो सत का साथी, और जिसके पास सत ज्ञान नहीं है, वो अधूरा ज्ञान है, तो वो सत का साथी यानी सत्संग नहीं रखता। परमात्मा कबीर जी ने अपनी वाणी बताया, सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी बंधे सभी काल की डोरी। सुर देवता, नर आम व्यक्ति, और मुनिजन ये ऋषि महर्षि, कहते ये सभी काल की डोरी से बंधे हुए हैं, ये काल के ज्ञान से परिचित हैं, ये ब्रह्म को सुप्रीम पावर मानकर ओम नाम के जाप का सिमरण ध्यान करते रहे। और कुछ एक ऐसे रहे जो केवल अपने निष्कर्ष से, अब ज्ञान कैसे बिगड़ा, वेदों में केवल ओम नाम है और एक परमात्मा की साधना की तरफ संकेत है, निर्देश है, फाइनल है कि एक ही भगवान है जो सर्वशक्तिमान है, उसी की पूजा से पूर्ण मोक्ष होगा और वही पूजा के योग्य है, वही मोक्षदायक है, पाप कर्म नाशक है। साथ में ये भी लिखा है कि ओम नाम जो है ये
सिमरन करना चाहिए, ये ब्रह्म का जाप है। तो ऋषि महर्षि उसको ठीक से ना समझकर ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मानकर इस ब्रह्म को कहीं पर ब्रह्म बोलते हैं, कभी इसको कहीं पूर्ण ब्रह्म बोलते हैं, कहीं अक्षर ब्रह्म बोलते हैं, लेकिन ये ओम मंत्र केवल ब्रह्म का है। जिस कारण से उन्होंने साधनाएं करते हुए भी कुछ उपलब्धि नहीं हुई। फिर जब ओम नाम के जाप से हठ योग करने से प्रभु प्राप्ति नहीं हुई तो फिर विचलित हो गए। अपने अनुभव से बता दिया कि परमात्मा निराकार है, जबकि वेदों में और सदग्रंथों में और जिन महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात्कार हुआ उन्होंने बताया कि परमात्मा साकार है, मनुष्य दृश्य है, लेकिन उनका तेज, उनके शरीर की जो चमक है वो असाधारण है, लेकिन है मनुष्य जैसा ही। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार फिर ये उस साधना को छोड़कर अन्य साधनाएं करने लगे और जिसको जैसा भी अनुभव हुआ उसी को आधार मानकर उन्होंने अपना कोई इष्ट चुनकर साधनाएं करते रहे और काल के जाल में फंसे रहे।

0: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
2: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।
3: पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
4: अब आपको थोड़ी सी झलक देंगे श्रीमद् देवी भागवत से। यह श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इस पर आपको दिखाते हैं विष्णु जी को कितना ज्ञान था, ब्रह्मा जी को कितना ज्ञान था। 28:28 पर पहला सकंद। ये नारद जी और व्यास जी जो इन पुराणों के राइटर हैं, व्यास जी, ये दोनों डिस्कस कर रहे हैं। नारद जी से व्यास जी पूछ रहे हैं, नारद जी बता रहे हैं। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक ही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था, यानी विष्णु जी से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी है। अब नारद जी के ज्ञान का भी पता लग जाएगा इसमें, ये विष्णु जी को देवा अधिदेव यानी भगवानों के भगवान जगत के स्वामी कह रहे हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, चार भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है, वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु हैं। विष्णु जी को जगत गुरु कह रहे हैं कौन? नारद जी। एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो, आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? आप किस भगवान की पूजा कर रहे हो? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हो। ब्रह्मा जी के विनित वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन, सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव, मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और शंकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। सुवर्त, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग के सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूं, अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। अब ये क्या बता रहे विष्णु जी के? मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं और फिर थोड़ा बहुत समय मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय व्यतीत करता हूं, फिर उसके बाद तप करके बैटरी चार्ज कर लेता है, ये कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लेता है विष्णु जी, उस सिद्धियों को फिर समाप्त कर देता है, राक्षसों को मार कर पाप इकट्ठे कर देता है, मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। यहां बताया मुझे, विष्णु जी कह रहे, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, दुर्गा के, उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा का, उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में यानी मेरे धार्मिक नॉलेज में, स्पिरिचुअल नॉलेज में, मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में, मुझे जितना ज्ञान है, मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अपने आत्मा ब्रह्मा, विष्णु और नारद और व्यास जी के ज्ञान का ये पर्दा उठ गया कि ना तो ब्रह्मा जी ने कह कह का पता भक्ति के बारे में, क्योंकि वो विष्णु जी को सर्वेश्वर महेश्वर सब देवों के देव जगत के स्वामी सबका मालिक बताकर उसकी उपमा कर रहे हैं, और विष्णु जी ने अपना वेद दे दिया कि मैं दुर्गा की पूजा करता हूं या घोर तप करता रहता हूं, घोर तप करके कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, उन सिद्धियों के आधार से फिर राक्षसों का हनन करता है, हत्या करता है, और कहता है मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं जानता, दुर्गा मेरा इष्ट है, ये फाइनल गॉड है, मेरा अंतिम देवता है। अब पुण्य आत्माओं, परमात्मा आज नहीं 600 वर्ष पहले कहा करते हैं, सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी बंदे सभी काल की डोरी। ये सभी काल के बंधे हुए हैं, ये काल के से बाहर नहीं जा सकते, इनकी साधनाएं व्यर्थ है, इस काल के जाल में फंसे रहने की है। अब दुर्गा कहती है कि एक ब्रह्म की साधना करो, मेरी पूजा भी छोड़ दो। इसे सिद्ध है कि ना तो ब्रह्मा ने ज्ञान ना विष्णु जी को। आगे देखिए 562 पृष्ठ पर श्री संक्षिप्त देवी भागवत में 7वां स्कंद 562 पृष्ठ पे ये दुर्गा हिमालय को ज्ञान दे रही है। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन, यानी ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, अब ये तो पहले तो यहां तक तो अपने विषय बता रही, फिर कहती है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी हैं, वही यह अक्सर ब्रह्म है। अब देखो यहां से कहन लगी थी या ब्रह्म के बारे में बताऊंगी, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन, और ये क्या कह रही है, अक्सर ब्रह्म है और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है, वही परम सत्य है और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो और मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो। भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। अब क्या बताते हैं, महिमा तो गा रही है अक्षर ब्रह्म की और नाम बता रही है ब्रह्म का। परवण ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अभी सब उवा बाई बांध रहे हैं, यहाँ अक्षर ब्रह्म कह रही है, यहाँ केवल ब्रह्म का ओम नाम है बस। आगे देखो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी बातों को छोड़ दे, यानी मेरी पूजा भी छोड़ दो, दुर्गा कह रही है, और केवल उसी परमात्मा को जानो जिसका ओम नाम है। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है, संसार समुद्र से पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त कराने का सुलभ साधन है। जिस प्रकार इस आत्मा

आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। यह ब्रह्मलोक में रहता है यो ब्रह्म, और ओम नाम के जाप से उसके पास पहुंच जाओगे ब्रह्मलोक में। ये दुर्गा का ज्ञान है जो हिमालय को बता रही है, और विष्णु भगवान कह रहे हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर किसी देवता ने जानता ही नहीं। दुर्गा कह रही है कि उस कह रही है ब्रह्म का जाप करो, उसका ओम नाम है, नथिंग एल्स। उससे क्या होगा कि ब्रह्म लोक में चले जाओगे। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत सभी पुनरावर्ती में है। पुनरावर्ती यानी बार बार आने और जाने का जो चक्कर है। ब्रह्म लोक में गए प्राणी भी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते, उनकी भी जन्म और मृत्यु होती रहती है। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कल आपको दिखाया, उसमें लिखा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसकी ये पहचान है कि संसार रूपी वृक्ष के वो सभी अंगों को भिन्न भिन्न प्रकार से विस्तार से बताएगा, वो तत्वदर्शी संत होगा। उसके बाद फिर उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, अर्थात तो उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। गीता ज्ञान दाता कह रहा है, गीता ज्ञान दाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन को सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को परम शांति जीव को परम शांति उस समय होगी जब इसका जन्म और मृत्यु का रोग कट जाएगा, और सतलोक के अंदर जाने के बाद वहां कोई कष्ट नहीं, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, और वहां जाकर के जरा और मरण दोनों नष्ट, युवा शरीर रहेगा और कभी मृत्यु नहीं होगी। राग द्वेष नहीं, बाहि बंटवारा नहीं, नेक आत्माएं होती हैं जो आपस में वहां झगड़ा भी नहीं होता, सब भरे भंडार है भगवान के दरबार में, कोई काम नहीं। गीता जी माता है कि नैष्कर्मे जो सिद्धि है उपलब्धि है वो सतलोक में ही प्राप्त होगी, और उसकी साधना यहाँ 3 मंत्र के जाप से। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, प्रभु आपने अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जिस तत्वर्म के बारे में बताया है, कहा है कि उसके जानने के उपरांत तो प्राणी केवल जरा और मरण के मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करता है, अर्थात वो फिर यहाँ संसार की कुछ भी वस्तु की इच्छा नहीं करता, यहाँ से छुटकारा ही चाहता है, तो किम तत्वर्म, वो तत्वर्म क्या है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता कहता है, मेरा तो एक ओम अक्षर है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवहरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके स्मरण करता हुआ जो व्यक्ति शरीर त्याग कर जाता है वो ओम नाम से होने वाली परम गति को प्राप्त होता है। और गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ये 3 मंत्र का जाप, इसमें ओम भी इंक्लूड है, ओम तत् सत, ओम तो क्लियर है, तत् और सत ये सांकेतिक है, ओम और तत् वो सांकेतिक शब्द मिलकर ये सतनाम बनता है, सच्चा नाम बनता है सतनाम। सत शब्द जो सत है वो सारनाम है, वो सारनाम मिलकर 3 मंत्र का यू जाप इकट्ठा ही हो जाता है। तो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म उस परमेश्वर की शरण में जाने के लिए, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने के लिए, जरा मरण से छुटकारा पाने के लिए तत्वदर्शी संत द्वारा बताए गए उस 3 मंत्र के जाप का स्मरण करे, रटना लावे, तब उसका पूर्ण मोक्ष होगा। यानी व्यास जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी श्रेष्ठ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि विष्णु जी सर्वशक्तिमान सबसे उत्तम, विष्णु जी कह रहे हैं मैं दुर्गा से ऊपर कोई देवता भगवान नहीं जानता, दुर्गा कह रही है ब्रह्म ही फाइनल गॉड, उसका ओम नाम ब्रह्म लोक में रहता है, और वेद और गीता जी वेदों का सारांश है, गीता जी श्रीमद भगवद गीता वेदों का सारांश है, और उसमें बताया कि ओम नाम है ब्रह्म का, और ओम नाम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी गए हुए वापस जन्म मृत्यु को आते हैं, और ब्रह्म कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो, जब पूर्ण मोक्ष चाहिए था
उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताएंगे, ना वेदों में वर्णित, ना गीता जी।

इतना किसी अन्य ऋषि के पास भी ज्ञान, और वो तत्वदर्शी संत स्वयं परमात्मा ही आते हैं। सतयुग के ऋषियों के ज्ञान, और वो ऋषि जी क्या ज्ञान रखते थे देखिएगा 414 पे। अब प्रसंग चल रहा है कि सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी बंदे सभी काल की डोरी। ये है छठा स्कंध संस्कृत देवी भागवत 414 पृष्ठ पे। जन्मे जय ने पूछा महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है। व्यास जी से पूछ रहे हैं इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। अब व्यास जी के ज्ञान की पोल खुल लगी। वो नो कह रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूरे ज्ञाता थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। वे भी दुर्गा की पूजा किया करते थे और वेद के ज्ञाता थे। वेदों में और गीता जी में कितने भी दुर्गा की पूजा का प्रावधान नहीं है। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायत रहता था। धर्म की यही सतीची त्रेता में रही, परंतु कुछ हरास हो गया था। सतयुग की जो सतीची थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे ईव कलयुग के ब्राह्मण माने जाते हैं। ओ तेरा गजब हो, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण हो गया है, बन गया है। अब पुण्य आत्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले यह संघर्ष किया था। इस ज्ञान को यहां अपना एक बीज रूप में छोड़ गए थे। यथार्थ ज्ञान को उस समय के इन नकली ब्राह्मणों ने, इन राक्षस रूपी ब्राह्मणों ने, दास नहीं कह रहा, देवी भागवत बता रही है कि कलयुग के ब्राह्मण सतयुग त्रेता द्वापर के राक्षसों के समान है। और उन्होंने कैसा जुल्म किया परमात्मा के साथ, कबीर जी के साथ, जो हमारे को यथार्थ ज्ञान देने स्वयं भगवान आए थे और उस ज्ञान को इन्होंने हम तक नहीं आने दिया। आप जी ने कल गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में पढ़ा था कि जो अन्य साधनाएं जो करते हैं, कोई ऐसी करता है, कोई कैसे कर रहा है, कोई कुछ करता है, आध्यात्मिक मार्ग में जो वो लगे हुए हैं वो अपनी अपनी क्रियाओं को, अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाश करने वाली जानकर कर रहे हैं। और उनको ये पता लग जाए कि पाप नाशक नहीं है तो उसी दिन छोड़ देंगे वो। तो उस तरह उस सचिदानंद घन ब्रह्म ने जो स्वयं परमात्मा आए थे, स्वयं परमात्मा आते हैं और वो जो ज्ञान देते हैं वो फिर अपनी मुखारविंद से उच्चारण करते हैं वो यथार्थ ज्ञान को, और उस ज्ञान के अंदर बहुत विस्तार के साथ कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, वो विशेष विस्तार से बताई गई है। और उस ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, फिर वो बताएंगे तेरे को यथार्थ ज्ञान। अपने आत्मा, अब काल ने ये दूत भेजे थे इस बोली आत्मा और श्रद्धालुओं को मिसगाइड करने के लिए। उसको पता था कि कलयुग में परमात्मा ने कहा है कि हम अपना ज्ञान दे करके अपनी प्यारी आत्माओं को सतलोक ले जाएंगे। काल ने कहा था कि इस कलयुग में ऐसे कर दूंगा इनको, कोई भक्ति के योग्य नहीं रहेंगे, इतना ज्ञान ठोक दूंगा कलयुग के अंदर, इतने विभाजन कर दूंगा मानव के। अब 36 तो मजो बना दिए और ना जाने कितने नकली पंथ चला दिए, लेकिन परमात्मा को पता था कि वो सभी पंथों की अज्ञान की अंपोल खोल देंगे, और जब जिसकी पिटारी में, जिसकी बोरी में जिसका माल होगा वो खुलकर सामने आ जाएगा और वो बढ़िया माल साथ में होगा, डेरी लगा दी जाएगी, तो अपने आप ही समझ जाएंगे कि यो माल अच्छा है, यो गलत है, ग्रहण कर लेंगे। और इस युग में शिक्षा देना परमात्मा कबीर जी के लिए अनिवार्य था। और शिक्षा का सबसे बड़ा दुर्गुण है कि इसमें ये बेईमान बनाती है जीव को, विकारों का घर बना देती है। सतयुग त्रेता द्वापर में ये एक अवगुण
एक ही वर्ग में था, ब्राह्मण वर्ग में, और वो इतने छल कपट झूठ कपट के सहारा लेकर के अपना जीवन बर्बाद करते रहे और साथ में अन्य यजमानों को भी मिसगाइड करते रहे अपने लालच और लोभ में। वो विद्वान होने करके एक दूसरे की टांग भी खींचते थे, अपने आप को विद्वान सिद्ध करने के लिए चतुरता प्रयोग करते थे। परमात्मा कहते हैं कि इस विद्या में अवगुण बहुत है, लेकिन इसमें एक ही गुण है, इसमें एक ही गुण परमात्मा ने हमारे लिए रखा है कि हम सदग्रंथों को स्वयं पढ़ सकेंगे और उनके गुण रहस्यों को स्वयं समझकर भगवान पहचान लेंगे। और जब हम भगवान से परिचित हो जाएंगे फिर हमारे लिए शिक्षा भी हानिकारक नहीं रहेगी, माया की दौड़ नहीं रहेगी। भगवान हमें बगैर दो नंबर का काम करे ही बहुत ज्यादा धन देते रहेंगे, क्योंकि हमारी भक्ति मार्ग ऐसा है, तो फिर हमने किसी प्रकार का कोई विकार करण की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो पुण्यात्माओं, तो वेद बताते हैं कि वो परमात्मा कैसी लीला करता है। कबीर परमेश्वर है, वो कबीर देव है, हम उसको कबीर साहब कहे हैं, कबीर देव कहो चाहे साहब कहो, राम कहो भगवान कहो, वेदों में उसे कबीर देव कहा है। कहीं पर कवि सीधा शब्द भी लिखा है तो वो कवि काव्यकार के लिए होता है, और एक भाषा भाषा का अंतर होता है। जैसे फारसी भाषा में कबीरन लिखते हैं कबीरन, या कबीरा लिखते हैं या खबीरा लिख देते हैं, तो वो परमात्मा के उस यथार्थ नाम की तरफ ही संकेत है। ऐसे ही कबीर देव वेदों में लिखा है। तो वो कबीर परमात्मा क्या लीला करता है ये तो वेद बता रहे हैं, और वो 600 वर्ष पहले ऐसी लीलाएं करके चले गए, सतयुग में की, त्रेता में की, द्वापर में ये लीलाएं की, ये ज्ञान दिया, लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर का दिया हुआ ज्ञान नहीं रहा। अब कलयुग में फिर आकर परमात्मा ने दिया, वो ज्ञान समाप्त करवा देते थे ये नकली ऋषि, कबीर जी के ज्ञान को नष्ट करा देते रहे सतयुग त्रेता द्वापर तक। अब कलयुग में ये हमारे पास उपलब्ध है, कुछ दिनों में इसका भी ये विनाश करा देते। तो 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने जो लीलाएं की कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए, एक धर्मदास नाम के महापुरुष पुण्यात्मा थी कि भगवान के लिए भटक रहे थे, तीर्थ करते फिर रहे थे, श्री कृष्ण जी के पुजारी थे, उनको मिले यथार्थ ज्ञान दिया, फिर धर्मदास जी ने उसके बाद वो सत साधना की। वही परमात्मा दादू साहेब जी को मिले, राजस्थान के अंदर दादू साहेब जी थे जयपुर के पास, वहां परमात्मा आए, सतलोक से चलकर आए, 7 वर्ष के दादू जी बालक थे, बच्चों में खेल रहे थे, वहां उनको एक बूढ़ा बाबा के रूप में मिले, सतलोक लेकर गए उसकी आत्मा को। पीछे से वो 3 दिन 3 रात तक अचेत पड़े रहे दादू जी का शरीर, 3रे दिन वापस उनकी आत्मा आई तो उन्होंने कबीर जी की कलम तोड़ महिमा गाई। ऐसे गरीबदास साहेब जी छुड़ानी गांव, जिला झज्जर वर्तमान में हरियाणा, तो वहां परमात्मा सह शरीर आए, सतलोक से चलकर आए, एक जिंदा महात्मा, बूढ़ा बाबा का हृदय एक जिंदा महात्मा के रूप में, जिंदा संत के रूप में, मुसलमान होते जिंदा, जैसे कोई अलग अलग वेशभूषा होती है उनको अलग अलग भेख बोलते हैं, जिंदा महात्मा होते हैं, एक ओवर कोट सा पहनते हैं काला सा घुटनों के नीचे तक का, एक अंडरवियर पहनते हैं, सिर पर एक टोप पहनते हैं, इस पर दाढ़ी और सिर के बाल बड़े बड़े होते हैं, इस वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। तो परमात्मा जिंदा के वेशभूषा में, गरीबदास जी 10 वर्ष के थे, गौवें चरा रहे थे खेतों में, और भी बहुत से पाली गवाले थे, वहां गरीबदास जी आपको आकर मिले, सतलोक लेकर गए, वहां उन्होंने सब ब्रह्मंडों की जानकारी दी, अपनी यथार्थता बताई, वहां सतलोक में दर्शन दिखाए, गरीबदास जी के शव की अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर दी थी, चिता पर रख दिया गया था मृत जानकर, इतने में आत्मा वापस भेज दी परमात्मा ने। खड़े हो गए गरीबदास जी, फिर ये वाणी बोलन लग गए जो परमेश्वर ने उनके हृदय में फीड कर दी थी कबीर जी ने, तो वही वाणी आज
परमात्मा कबीर जी की महिमा से ओतप्रोत है, गरीबदास जी के द्वारा लिखी गई बोली गई और एक गोपाल दास नाम के एक दादूपंथी महात्मा संत के द्वारा वो लिखी गई आज हमारे पास उपलब्ध है। तो वो परमात्मा ऐसी लीलाएं करते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, अपना यथार्थ ज्ञान बताते हैं।

0: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
1: गैलग्रीज इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी ले पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैण लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300 और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-11।

प्यारा 4032251111 एशिया पैसिफिक इमिग्रेशन दे मनिंदर सिंह तिलोहोरन दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144 3670 त्रेंट एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नूं कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसीं अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983, 825-760-0983।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी।

0: डीजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिमे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेन ले तुसी परमजीत पलाहा जी नु 403-544-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। कैलगरी दे इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हुन सर्वन कर दिया श्री हरमंदर साहब अमृतसर तो श्री रहरा साहब जी दे पाठ। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
2: हर जोग जोग

बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ। जात मह जोत, जोत मह जाता, अकल कला भरपूर रहे।

तेरांतना परावरेया। रागासा महला चौथा। सो पुरख एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमागम अपारा। सब त्याव है सब त्याव है तुद जी हर सच्चे सृजनहारा। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दा तारा। हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारन हारा। हरा पे ठाकुर हरा पे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाना। एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी हाँ तुद बिन अवर न जाना। तू पार बहम बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुणाख बखाणा। जो सेव है जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्याव है हर त्याव है तुद जी से जान जुग मह सुखवासी। से मुक्त भय जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी। जे निरपाओ जिन हर निरपाओ त्याया जी तिनका पाओ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता। तेरी अनक करै हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंता। तेरे अनेक पढ़ै बहु सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वडावर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहें सो होई। तुदापे सृष्ट सब उपाई जी तुदापे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सहका जान ओई। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैडा साई जो तौ पावै सोई थीसी। जो तू दे सोई हों पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनो कृपा करहें तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप बिछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल बिजोग मिल बिछुड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाणै। जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेख है जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला।
ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈਲੇ ਨਿਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨਹੇ ਕੀਆ ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹਿ ਡੂਬੀ ਅਲੇ ਮਨ ਏਕ ਨਾ ਚੇਤ ਸਮੂੜ ਮਨਾ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ ਨਾ ਹਉ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ ਜਿੰਤੂ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀਹੇ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਹਾਉ ਜਪਤਾ।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवें कवियो वाच बेनती चौपाई हमरे करो हाथ रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण नमन रहा हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सवै तुम काव हो आप हाद मोहे बिचाव हो सुखी बसा मोरो परवारा सेवक सिख सभा करतारा मोर अच्छा निज करद करिया सब बैरन को आज संघरिया पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याओ जो वर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ द मुझे अवरिया मरण काल का त्रास निवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तोज जु करिहो रक्षा राख ले हो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के अंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन उपजायो आद अंत कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोह बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर स्थूला सा पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान घट घट के पट पट की जान जावुद करख करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपारा जावया करख करत हो कबहू तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते वादन सृष्ट सब तारै आप आपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अरालम रंका निर्विका निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूढ़ चारत भेदा जाको भेवना पावत भेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह भेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तो तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप नूप स्वरूपा रंग भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेत जकीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा है बैठा कहूं सिमट भयो संकर अकैठा सागरी सृष्ट दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप सजंपव अवर अच्छा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्जिते उठवत उत पाता सकल मलेश करो रण काता
जे अस तुज तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखत है मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है ताकि काल निकट न आए हैं। रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट रिष्ट ट्रे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो ताके ताप तन कमह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह छ सकै न कोई। एक बार जंतु मैं संभारा काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा दारद दुष्ट दोख ते रहा।

सवैया पाएंगे हे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने हो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक ना माने हो। सिमरत शास्त्र वेद स्वै बहु भेद कह हम एक ना जाने हो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तोहे बखाने। दोहरा

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सह सेती मन वजियां बाधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां, शब्दो तां गावो हरी केरा मन जनी वसाया। कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले, हर नाल हो तू मन मेरे दुख सावे सारना। अंगीकार हो करे तेरा कार्ज सब सवारना, सबना गल्ला स्मृत स्वामी सो क्यों मनहो बिसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नाहीं घर तेरै, घर तां तेरै सब किश है जिस देहे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनकै मन वसिया बाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहेब क्या नाहीं घर तेरै, साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाईया। कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पूजाईया। सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दी आए बड़ियाईया। कह नानक सुनो संत हो शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो बाजे पंच शब्द तित कर सुभागै, कर सुभागै शब्द बाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख होआ तित कर अनहद वाजे।

दुख हरता एह बिद को स्वामी तै काहे बिसराया। जावहि शरण गहि कृपा निध,

नानक कहत चेत चिंतामन तैपी उत्तर पार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: ਕੈਲਗਰੀ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰੇਡੀਓ 102.7 FM ਤੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਹੋਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਆਸਾ ਦੁਆਰਾ।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी ले पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नु कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
3: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
4: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फेशिया स्मार्ट ट्रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल